मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 8 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। प्रस्तुत है मंगल ध्वनि।

0: इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथा समय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है आज का विचार, अहिंसा पर महात्मा गांधी के विचार।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत

0: वाचक स्वर है श्री अरविंद गोस्वामी के।
1: एक लेखा है, पर हम नया इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक अहिंसा का सवाल है, मैं राष्ट्रीय मानस का प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जंगल के कानून की जगह प्रबुद्ध प्रेम के कानून की स्थापना ही मनुष्य की नियति है। कोई भी शासन संपूर्णतः अहिंसक बनने में सफल नहीं हो सकता क्योंकि वह व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि मैं उस स्वर्ण युग की कल्पना आज नहीं करता हूँ, फिर भी मैं मानता हूँ कि एक अहिंसक समाज की संभावना है और मैं उसकी स्थापना की चेष्टा कर रहा हूँ। अक्सर ऐसा कहा गया है कि अहिंसा का सिद्धांत मैंने टॉल्स्टॉय से लिया है। इसमें पूरी सच्चाई तो नहीं है, लेकिन अहिंसा के संबंध में से अधिक बल मिला है। लेकिन इस बात को टॉल्स्टॉय ने स्वयं भी स्वीकार किया है कि अप्रतिरोध की जिस पद्धति का संवर्धन और विकास मैंने दक्षिण अफ्रीका में किया, वो उस अप्रतिरोध से भिन्न है जिसके संबंध में टॉल्स्टॉय ने लिखा है और जिसे अपनाने की उन्होंने सिफारिश की है। अगर हमारी अहिंसा वैसी न हुई जैसी कि वह होनी चाहिए, तो राष्ट्र को उससे बड़ा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उसकी आखिरी परीक्षा में हम बहादुर के बजाय कायर साबित होंगे और आज़ादी के लिए लड़ने वालों के लिए कायरता से बढ़कर अपमान की बात और कोई नहीं है। अशांति से शांति पैदा नहीं की जा सकती। ऐसा प्रयास तो कांटों से अंगूर चुनने या बबूल से अंजीर चुनने जैसा होगा। मुझे इस बारे में तनिक भी संदेह नहीं कि अहिंसा के बिना स्वराज्य नहीं हो सकता और न ही कोई रचनात्मक कार्य हो सकता है। रचनात्मक कार्य अहिंसा का ही सौम्य रूप है, लेकिन अहिंसा की सच्ची कसौटी इस बात में है कि हम अपने स्वीकृत ध्येय की सेवा करते हुए निसंकोच भाव से मृत्यु का वर्णन करने की क्षमता अर्जित करें, ऐसी मृत्यु जो सर्वथा निर्दोष हो। अहिंसक उपायों से स्वराज्य तब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक कि हमारी अहिंसा बहादुरी की अहिंसा न हो और इस कोटि की न हो कि वो सफलतापूर्वक हिंसा का मुकाबला करे। अहिंसक कार्रवाई के लिए दूसरे के सहयोग पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, लेकिन हिंसक कार्रवाई दूसरे के सहयोग के बिना नाकाम हो जाती है। अहिंसा एक ऐसी शक्ति है जिसका सहारा बालक, युवा, वृद्ध सब ले सकते हैं, बशर्ते कि प्रेम रूपी ईश्वर में तथा मनुष्य मात्र में उनकी सजीव श्रद्धा हो। जब हम अहिंसा को अपना जीवन सिद्धांत बना लें, तो ये हमारे संपूर्ण जीवन में व्याप्त होना चाहिए। यूं कभी कभी छुटपुट मामलों में उसका पालन करने से लाभ नहीं हो सकता। अहिंसा और कायरता परस्पर विरोधी शब्द हैं। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है, कायरता बड़े से बड़ा दुर्गुण है। अहिंसा का मूल प्रेम में है, कायरता का घृणा में। अहिंसक सदा कष्ट सहिष्णु होता है, कायर सदा पीड़ा पहुंचाता है। विशुद्ध अहिंसा उच्चतम वीरता है। अहिंसक व्यवहार कभी पतनकारी नहीं होता, कायरता सदा पतित बनाती है। अहिंसा का मार्ग कठिन तो है, लेकिन उसका परिणाम स्थायी और दोनों के लिए ही शुभ होता है। अहिंसा का व्यापार घाटे का व्यापार नहीं होता। अहिंसा के दोनों पलड़ों का जमा खर्च शून्य होता है, यानी उसके दोनों पलड़े समान होते हैं। जो जीने के लिए खाता है, सेवा करने के लिए जीता है, केवल जीवन निर्वाह करने के लिए कमाता है, वो काम करते हुए भी अकर्मा है, वो हिंसा करते हुए भी अहिंसक है। अहिंसा की सिद्धि तपश्चर्या पर निर्भर है। तपश्चर्या सात्विक होनी चाहिए, उनमें अविश्रांत उद्यम, विवेक इत्यादि समाविष्ट हैं। शुद्ध तप में शुद्ध ज्ञान होता है। अनुभव बताता है कि लोग अहिंसा का नाम तो लेते हैं, लेकिन बहुतों को मानसिक आलस्य इतना रहता है कि वे वस्तु स्थिति का परिचय तक करने का परिश्रम नहीं उठाते। अहिंसा कोई आसान काम नहीं है, वो विश्व की सबसे सूक्ष्म शक्ति है। इसको पकड़ पाना आसान नहीं है और मनुष्य धोखे में पड़ जाता है। अहिंसा तो मानव जाति को उपलब्ध सबसे बड़ी शक्ति है।
0: आज का विचार कार्यक्रम में अभी आपने सुना अहिंसा पर महात्मा गांधी के विचार। वाचक स्वर थे श्री अरविंद

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। कार्यक्रम के आज के अंक में आप सुनेंगे बालकांड के दोहा संख्या 221 की पहली चौपाई से दोहा संख्या 223 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। गायक कलाकार हैं उत्तरा केलकर, उषा मंगेशकर और साथ ही संगीतकार सतीश भाटिया।
1: एपिसोड 82।

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है, और शाम 6:40 पर आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। सुबह 8:30 पर हमारी इसी सभा में आप सुनेंगे सौरभ कार्यक्रम में वार्ता, विषय प्लास्टिक प्रदूषण और उसके परिणाम, वार्ताकार डॉक्टर कांता मीणा, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास, संयोजन श्री अमित सिंह का। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विकास यात्रा में दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के बारे में, आलेख और प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास, संयोजन श्री अमित सिंह का। दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे घर बैठे फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन ट्यूशन, शिशु के जन्म के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन की पहचान और उपचार, कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी कवच, कमर दर्द की समस्या, विटामिन D3 का महत्व, स्वयं सहायता समूह योजना पर आधारित विशेष कार्यक्रम कदम बढ़ाए चलो आप कार्यक्रम में सुनेंगे, और एक भेंटवार्ता, विषय स्वयं सहायता समूह में क्लस्टर मैनेजमेंट की भूमिका, श्रीमती ममता कंवर से श्रीमती मधु शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति श्रीमती पुनीत बिश्नोई, संयोजन श्री अमित सिंह का। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा अपनी बात रखना सीखें। लघु जानकारी के विषय रहेंगे पश्चिमी घाट भारत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, अनुच्छेद 19 और UPI। शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे बुआई से पूर्व बीज उपचार का महत्व, विलायती बबूल से पर्यावरण को नुकसान, बालिका व महिला उत्थान के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं, राज किसान साथी पोर्टल।

रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे मणिलाल नाग का सितार वादन राग बागेश्वरी पर, तबला संगत

0: ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम खेती की बातें, खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरक विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री अश्विनी व्यास।
1: किसान भाया राम राम। खरीफ री फसलों में संतुलित उर्वरक रो उपयोग अपने करना चाहिए। उर्वरक चाहे कोई भी हो और फसल चाहे कोई भी हो, जब आप संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करा तो वे अपनी फसल ने फायदा पहुँचावे, सागे सागे मिट्टी ने कोई नुकसान कोनी होवे। फसलारी औसत उपज बढ़ाने वास्ते ही आप उर्वरकों का प्रयोग करा करा। हाँ, फसल उत्पादन में मुख्य रूप से बीज, सिंचाई, उर्वरक ई सगला में 50% से अधिक रोल उर्वरकारो होवे। करीबरी फसलों में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरो, सोयाबीन, अरहर, सूरजमुखी, मूंग, उड़द इत्यादि लगाई जावे है। तो ए जी की फसल हैं, इयाने वास्तर आपने उर्वरक रो उपयोग करती टाइम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के वास्तर किया उपयोग करना है, इरो आपने ठा होनो चाहिए। सोयाबीन में अधिकतर बुआई रे समय ही उर्वरकारो प्रयोग करो जावे। अगर उर्वरकारी स्थापना बीज रे नीचे करी गई है तो बहुत बढ़िया रहे। बाजरे में बुआई रे समय ही उर्वरक दियो जावे है। सिंचित बाजरे में टॉप ड्रेसिंग रे बारे में सोचा, लेकिन धान एक ऐसी फसल है जिके में नत्रजन री कम से कम 2 टॉप ड्रेसिंग करनी जरूरी होवे। नत्रजन रे रूप में अगर अमोनियम सल्फेट दियो गयो है तो भरे खेत में पूरो लाभ अपन ने मिल सके। अमोनियम सल्फेट रे अभाव में यूरिया उपयोग अपा कर सका। यूरिया डालने से पहले यथासंभव अगर पानी खेत से खाली कर लियो जावे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहे। यूरिया ने गीली मिट्टी में मिलार बिरा लाडू जिसा बनार और कई घंटे रे बाद बराबरी से खेत में अगर आप बिखेर देवा तो भरे पानी रे डर कोनी रहे। धानरी फसल में जिंक री कमी रह गई है। बुआई रे समय अगर जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग आप करा तो रोपाई रे 40-50 दिन बाद कर सका। हाँ, खड़ी फसल में 0.5% जिंक सल्फेट बराबर मात्रा में चूनो मिलार या 0.1% चिलिटेड जिंक 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर री दर से 2 या 3 छिड़काव 10 दिन रे अंतराल में आप कर सका। हाँ, रासायनिक उर्वरक रे अलावा धान में हरी खाद, जैव उर्वरक, नील हरित काई, एजोला, PSB रो अगर आप उपयोग करा तो इसे भी आपने चोखो लाभ मिले। किसी भी कीमत पर आपने सोयाबीन री खड़ी फसल में यूरिया रो उपयोग कोनी करना है। लगातार बरसात होने के कारण सोयाबीन में जड़ गांठ अगर कम बने तो 2% यूरिया या DAP रे घोल रो छिड़काव सोयाबीन रे सागे सागे अन्य खरीफ फसल जिया बाजरो, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि में आप कर सका। बाजार रे मायने तरल रूप में भी उर्वरक उपलब्ध है। आपा भी तरल रूप से उपलब्ध उर्वरक ने अगर खेत में उपयोग करा तो खरीफ री फसल में आपा चोखी उत्पादन ले सका। लेकिन सागे सागे ओ भी आपने ध्यान रखना जरूरी है कि जिका भी उर्वरकारो आप उपयोग करा बियानी जितनी मात्रा बताईड़ी है आपने बीती ही मात्रा रो उपयोग करना है। अगर जरूरत से ज़्यादा बताई गई मात्रा रो आप उपयोग कर सा तो वो आपने स्वास्थ्य वास्तर भी खतरनाक हो सके और मिट्टी रा गुण भी सू कम हो जावे। तो आपने ये चीज़ रो विशेष ध्यान रखनो है कि उर्वरका रो उपयोग जिको है वो संतुलित ही करनो है ताकि फसल चोखी आवे, आपना स्वास्थ्य सही रहे और मिट्टी री जी की गुणवत्ता है वह हमेशा बनी रहे।
0: खेती की बातें कार्यक्रम में खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरक विषय पर जानकारी दे रहे थे श्री अश्विनी व्यास। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ता।

0: भारत इण्डोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढाह्वानं कुर्वन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया देशस्य संसदं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गम् अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्रीमोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय यूपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य

श्रोताओं, हम जो आपसे हर रोज़ कनेक्ट होते हैं, इसमें तकनीकी का सबसे बड़ा योगदान है। और निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा जब ईजाद हुई, उसके बाद ही यह सब कुछ संभव हुआ। हमारे सपनों को आयाम देने में, उनको साकार करने में और जीवन को गति देने में जिस चीज़ का सबसे बड़ा योगदान रहा है, वह तकनीक का है। आज हम मोबाइल फ़ोन से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं, बात हो सकती है और वीडियो कॉल भी हम कर सकते हैं। ऐसी सुविधाएं और हमारे जीवन को सुगम बनाने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है, वह तकनीकी शिक्षा है। और हम तकनीक से भी पहले जो चीज़ नींव रखती है, नींव का निर्माण करने का काम करती है, वह है शिक्षा। अगर कोई व्यक्ति स्कूल ही नहीं जाए तो फिर वह तकनीकी शिक्षा के महत्व को कैसे समझ सकता है। लेकिन हाँ, जिसने शिक्षा को अपनाया है, वह अपने जीवन में किसी न किसी आयाम तक, किसी न किसी मुकाम तक निश्चित तौर पर पहुँचता है। जीवन में शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। एक दौर था जब अक्षर ज्ञान को महत्व दिया जाता था, लेकिन एक दौर वह भी आया जब अक्षर ज्ञान से भी एक कदम आगे, यानी कि कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर के ज्ञान को महत्व दिया गया। और अब एक दौर फिर से आने वाला है, वह दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। अब अगर किसी को एआई के बारे में जानकारी नहीं है, या वह एआई के तौर पर अपनी एजुकेशन को, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है, तो वह निश्चित तौर पर अपने जीवन में पिछड़ जाएगा। हम अगर चाहते हैं कि हम भी आज के संदर्भ में और वर्तमान के संदर्भ में अपने आप को अपडेट रखें, तो हमें अपने आप को एआई से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ना ही होगा और एआई की शिक्षा की और हमें आगे बढ़ना होगा। पूरे विश्व भर में एआई पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स एआई के लिए डेवलप किए जा रहे हैं ताकि तकनीकी शिक्षा में और अत्यधिक विकास हो और तकनीकी शिक्षा के डेवलपमेंट को स्पीड दी जा सके, गति दी जा सके। यह सब संभव हो रहा है शिक्षा के माध्यम से। और शिक्षा का हमारे जीवन में कितना महत्व है, यह समझाना या यह बतलाना बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। हम और आप इस बात से भली भांति परिचित हैं। शिक्षा का महत्व इतना है कि भले ही आपको एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी न मिले, भले ही आप उस शिक्षा के माध्यम से अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं, भले ही उस शिक्षा के माध्यम से आज आपका पेट भी नहीं भर पा रहा हो, लेकिन शिक्षा चीज़ों को, बातों को सोचने और समझने के आयाम बदल देती है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो किसी बात, किसी समय, किसी परिस्थिति और सिचुएशंस को समझने में आप अनपढ़ से, या वो लोग जो शिक्षा के निचले स्तर पर हैं, उससे अत्यधिक ज़्यादा अपडेट होंगे, गंभीर होंगे और सकारात्मक होंगे। लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप चीज़ों को, परिस्थितियों को, सिचुएशन को और बात को भली भांति नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में जिस तरह से आप उस बात और उस परिस्थिति पर रिएक्ट करते हैं, आपका वो रिएक्शन 100 में से 90% गलत हो सकता है। कहने का मतलब ये कि शिक्षा आज भले ही आपका पेट भी नहीं भर पा रही हो, शिक्षा आज आपको भले ही अच्छा रोज़गार नहीं दिला पा रही हो, लेकिन शिक्षा आपको अपने जीवन में चीज़ों को समझने के लिए बहुत अत्यधिक मैच्योर करती है, मैच्योर बनाती है। ऐसे में हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को किताबों से जोड़ कर रखें, अपने आप को शिक्षित करते चलें। जैसे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए विकास हो रहे हैं, उन्हें अपनाएं। शिक्षा ना सिर्फ आपका विकास करती है, ना सिर्फ आपके घर परिवार, आपके जीवन का विकास करती है, शिक्षा आपके राष्ट्र का भी विकास करती है, राष्ट्र का भी निर्माण करती है।

अगर आज भारत भूमि पर रहने वाले किसी भारतीय नागरिक ने कोई बहुत ही बेहतरीन इनोवेशन किया है, आविष्कार किया है, जो पूरे विश्व भर के लोगों के लिए या उनके जीवन को आरामदायक बनाने के लिए मददगार हो, तो उस आविष्कार की वजह से न सिर्फ उस व्यक्ति का पूरे विश्व भर में नाम होता है, वह व्यक्ति जिस राष्ट्र से बिलोंग करता है, जुड़ा होता है, उस राष्ट्र का भी नाम होता है, उसका निर्माण होता है। लोग न जाने कितने अरबों खरबों रुपए खर्च कर देते हैं ऐसे व्यक्तियों को स्पॉन्सर करने में, ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा को स्पॉन्सर करने में, और उस व्यक्ति से जुड़े हुए राष्ट्र के विकास को स्पॉन्सर करने में। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि शिक्षा की और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव हो, शिक्षा में नित नए डेवलपमेंट हो, विकास हो, और अच्छी और बेहतरीन शिक्षा पद्धति से हमारी आने वाली संततियों का अध्ययन हो, तभी जाके हम राष्ट्र के निर्माण में और ज़्यादा अग्रणी हो सकते हैं और राष्ट्र के निर्माण को नई दिशा दे सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ पूरे विश्व भर में नए आयामों में और नए विकास की दौड़ में। चर्चा को देते हैं विराम और सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, अगर आप हमें सुन रहे हैं इस पूरी धरती के किसी भी कोने पर, चाहे रेडियो के माध्यम से, चाहे हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल सेट पर, तो आप इस बात से भलीभांति परिचित हो गए कि रेडियो टाइम का बड़ा पंक्चुअल होता है। हर एक निश्चित समय पर, हर एक तय समय पर उसके फिक्स्ड शेड्यूल्ड प्रोग्राम आते हैं, उन कार्यक्रमों का प्रसारण होता है।

समाचारों के साथ समाज के हर एक वर्ग से जुड़े कार्यक्रम हम आपको अपने हर एक प्रोग्राम को तय समय पर सुनवाते हैं और हम इस बात से भी सुनिश्चित हैं कि हमारे श्रोतागण हमें तय समय पर अपने विभिन्न कार्यक्रमों में सुनते ही हैं और निश्चित रूप से रेडियो के साथ साथ उनकी जीवन शैली भी तय समय के अनुसार अपने प्रतिदिन की एक्टिविटीज़ को क्रियान्वित करती होगी। श्रोताओं, समय का जीवन में बहुत अत्यधिक महत्व है। अगर आप चाहते हैं अपने आप को जीवन में अनुशासित करना, तो आपको सबसे पहले समय का मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन करना सीखना होगा। जीवन हर पल, हर क्षण, हर एक सुबह और शाम के साथ बीतता चला जाता है और गया हुआ वक्त, बीता हुआ वक्त आपके जीवन में, आपके इस जन्म में तो कभी वापस नहीं आएगा। जो तारीख, जो दिन आपका बीत गया, वह जीवन में वापस कभी नहीं लौटने वाला। समय के साथ साथ जीवन को जीने की जो शक्ति होती है, वह भी क्षीण पड़ती जाती है, कम पड़ती जाती है। ऐसे में हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जो ऊर्जा हमने आज के दिन में पाई है, उस ऊर्जा का हम संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग करें, न कि उस ऊर्जा को सोने में, नींद लेने में, आलस में या फिजूल के मनोरंजक कार्यक्रमों में बिता दें। कोशिश करें कि आपके समय के हर एक पल का विवेकपूर्ण उपयोग हो, ताकि आप अपने जीवन को आगे लेकर जा सकें। इस पूरी धरती पर सिर्फ वही व्यक्ति अपने जीवन में अग्रणी है और सक्सेसफुल है जिन्होंने समय का प्रबंधन सीखा है। जिस भी व्यक्ति ने समय का प्रबंधन सीख लिया, वह स्वयं में अनुशासित हो जाता है, और जो व्यक्ति अनुशासित हो जाता है, उसके पास में कभी यह शब्द नहीं होते कि मुझे समय नहीं मिला, या समय के अभाव के कारण मैं वहाँ उपस्थित नहीं हो सका, या मैं अत्यधिक व्यस्त था। ऐसी बातें उसके शब्दकोश में होती ही नहीं है जो समय का प्रबंधन करता है। वह व्यक्ति जो समय को मैनेज करके चलते हैं, उनके पास में हर एक एक्टिविटीज़ के लिए समय होता है। भले ही वह एक घंटा या दो घंटे का वक्त न हो, 10 मिनट का ही हो, लेकिन जो व्यक्ति समय को मैनेज करके चलते हैं, उनके पास में हर एक कार्य के निपटान के लिए वक्त जरूर होता है। वे कभी समय के अभाव की शिकायत नहीं करते। इस धरती पर बड़े से बड़े बिजनेसमैन जो करोड़ों अरबों का व्यापार करते हैं, उन पर भी एक दिन के 24 घंटे का समय ही उपलब्ध होता है। एक स्टूडेंट, एक छात्र जो अध्ययन कर रहा होता है, उसके पास में भी एक दिन के 24 घंटे ही उपलब्ध होते हैं। वे लोग जो जीवन में सक्सेसफुल होते हैं, उन्होंने इन 24 घंटों को मैनेज करना सीखा है, समय के महत्व को जाना है, तभी वे आज अपने जीवन में अग्रणी हैं, अग्रसर हैं। लाखों करोड़ों की जनता इस पूरी धरती पर भरी पड़ी है, लेकिन चंद लोग ही सफलता के शीर्ष पर पहुंच पाते हैं, और वे चंद लोग ही होते हैं जो समय का महत्व जानते हैं। हमें अपना समय फिजूल की एक्टिविटीज़ में, फिजूल के मनोरंजक कार्यक्रमों में व्यर्थ नहीं करने चाहिए, उल्टा हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। श्रोताओं, हम भी तय समय पर आपसे प्रोग्राम के माध्यम से रूबरू होते हैं। तय समय में ही आपको प्रोग्राम में सभी विषय वस्तु को समावेश करते हुए, संतुलित रूप से समावेश करते हुए आपसे साझा करते हैं। समय का जीवन में बहुत अत्यधिक महत्व है श्रोताओं। मदर नेचर भी समय के महत्व को जानती है, इसलिए पूरे वर्ष भर में 4 ऋतुएं आती हैं। तय समय पर बारिशें होती हैं, तय समय पर तेज जेठ की दोपहर ही पड़ती है, और तय समय पर ही मकर संक्रांति या शरद ऋतु का आगमन होता है। कभी भी मदर नेचर यानी कि प्रकृति इस समय के मैनेजमेंट को नहीं तोड़

होती है। इसीलिए हमारी धरती पर आज वर्ष पर्यंत प्राणवायु, वर्ष पर्यंत अनाज और वर्ष पर्यंत धूप और छांव अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है। अगर मदर नेचर भी समय के महत्व को या समय को मैनेज करके ना चले तो पृथ्वी पर जीवन संतुलित नहीं हो सकता, उल्टा विनाशकारी एक्टिविटीज़, गतिविधियां होगी जिसकी वजह से धरती पर मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा। हमें सीखना चाहिए प्रकृति से भी कि हाँ, हमें समय का मैनेजमेंट पूर्ण रूप से करना है और समय के साथ ही जीवन में अग्रसर होते चले जाना है। कार्यक्रम में हम भी समय के महत्व को मैनेज करते हुए, समय की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, कार्यक्रम को सूचनाओं के साथ, जानकारियों के साथ एंटरटेनमेंट का समावेश करते हुए संतुलित करने का प्रयास करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये एक और गीत।

तो श्रोताओं, इस बार की बारिशों में वर्षा जल का संरक्षण जरूर करें। हम मरु निवासी, थार के मरुस्थल में रहने वाले लोग, घरों में भूमिगत टैंक का निर्माण तो करते ही हैं। एक भूमिगत टैंक का निर्माण वह भी करें जिसमें बारिश के पानी को स्टोर किया जा सके। हो सके तो भूमिगत पानी को रिचार्ज करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाएं और एक पेड़ जरूर लगाएं, ताकि हमारी ये धरती हरी भरी रह सके और आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन की उपलब्धता इस धरती पर बनी रह सके। कार्यक्रम सुप्रभात में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है हीरो। स्वर है लता मंगेशकर और मनहर के।

बेटा फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, स्वर थे अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है हीरो, स्वर है देव नेगी और शिप्रा गोयल के।

बागी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए अरिजीत सिंह के स्वर में, फिल्म का नाम है एयरलिफ्ट।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज।
1: चलो हम हैं, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले

0: किए, ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और असर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के

0: सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस

0: रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President

दोनों ओर प्लास्टिक का कूड़ा दिखना आम बात है। प्लास्टिक प्रदूषण की झलक हमें रेल यात्रा करते समय विभिन्न शहरों से गुजरते हुए देखने को मिलती है। सब जगह प्लास्टिक का अंबार दिखाई पड़ता है। ट्रेन के हवा के झोंकों के साथ उड़ते हुए प्लास्टिक का दृश्य बहुत आम है। लंबी यात्रा में रेल की पटरियों के दोनों ओर प्लास्टिक की बोतलें तथा थैलियों का बिखरा हुआ मिलना स्थिति की गंभीरता का सूचक है। नदियों, तालाबों तथा झीलों में प्लास्टिक का कचरा हर जगह देखा जा सकता है। सुदूर पर्वतीय अंचलों में स्थित दुर्गम धर्म स्थलों के मार्गों पर भी प्लास्टिक पहुंच चुका है। कुछ इलाकों को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, लेकिन प्लास्टिक चोरी छुपे वहां भी दाखिल हो चुका है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने का मार्ग भी प्लास्टिक से पट गया है। गंगा के उद्गम स्थल गोमुख के मार्ग पर भी प्लास्टिक बिखरा मिलता है। इसीलिए स्थानीय जिला प्रशासनों को यात्रियों की संख्या को सीमित करना पड़ा है तथा उनके लिए यात्रा में ले जाने वाले सामानों की सूची देना जरूरी कर दिया है। जो सामान वे ले जाएंगे उसे वापस लाना अनिवार्य किया गया है। ऐसा इसलिए कि प्राय लोग प्लास्टिक की थैलियों में खाने पीने की चीज़ें ले तो जाते हैं, लेकिन इस्तेमाल के बाद थैलियों को रास्ते में ही फेंक देते हैं। प्लास्टिक सलिस्ट या प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक के एक विशेष समूह को कहते हैं, जिन्हें मुलायम होने पर वांछित शक्ल देकर बाद में सख्त बनाया जा सकता है। प्लास्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्लास्टिकोस से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है सांचे में ढलना, शक्ल देना। सन 1856 में अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक एलेक्जेंडर पार्कर ने प्लास्टिक बनाया था। उन्होंने इसे नाइट्रो सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके बनाया था। प्लास्टिक आमतौर पर उच्च अणुभार के बहुलक यानी पॉलीमर होते हैं। प्लास्टिक ज़्यादातर ओल्फिन नामक चैलेस रासायनिक से प्राप्त होता है। इन्हें प्लाइमर से बड़े अणु कार्बन परमाणु की वृद्ध श्रृंखला पर या कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के साथ ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन पर आधारित होते हैं। ये बड़े कण हैं जिन्हें पॉलीमर कहते हैं, जो कि छोटे छोटे कार्बन युक्त इकाइयों के दोहराने से निर्मित होते हैं। इन्हें मोनोमर यानी एकलक कहते हैं। जिस कंपनी ने इसकी शुरुआत की, प्लास्टिक का निर्माण किया, वह बाद में चलकर दिवालिया हो गई। यानी तब के ज़माने में प्लास्टिक को लेकर इतनी मांग नहीं थी, लेकिन बाद में प्लास्टिक का उद्योग ने तीव्र गति से तरक्की की। महज डेढ़ दशक में ही प्लास्टिक पूरी दुनिया में छा गया। आज वह एक गंभीर पर्यावरणीय संकट का रूप ले चुका है। माना जाता है कि सन 1907 में बैकलाइट के आविष्कार के साथ आधुनिक प्लास्टिक युग की शुरुआत हुई। बेल्जियम के निवासी अमरीकी वैज्ञानिक लियो बैकलाइट ने बैकलाइट नामक संश्लेषित प्लास्टिक बनाया था। बैकलाइट विद्युतीय प्रतिरोधक तथा ऊष्माहक होता है। इसे आसानी से वांछित आकार में ढाला जा सकता है, इसीलिए बिजली के उपकरणों के निर्माण में इसका व्यापक इस्तेमाल होना शुरू हुआ। यह विभिन्न चीजों की एक श्रृंखला के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। बहुतता उत्पादकों के चलते प्लास्टिक महानगरों, नगरों जैसे होते हुए देश, गांव, देहात तथा गहरी पैट बना चुका है। अब गांव में स्थानीय बाजारों, संपर्क मार्गों तथा पगडंडियों पर भी प्लास्टिक का कचरा यत्र तत्र सर्वत्र मिलता है। इन प्लास्टिकों में सर्वाधिक मिलने वाला पॉलिथीन यह थैलियों के रूप में प्रचलन में है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में हर साल करीब 1 अरब से ज़्यादा पॉलिथीन की थैलियाँ इस्तेमाल करके फेंक दी जाती है। इन्हीं थैलियों के इस्तेमाल की मियाद बहुत कम है, करीब 10 से 15 मिनट बाजार से खरीदारी करके घर पहुंचने तक। इसके बाद ये अवशिष्ट बन जाते हैं। पूरी दुनिया में हर मिनट में 10 लाख पॉलिथीन की थैलियां इस्तेमाल करके कचरे में बदल रही है। दूर नहीं जाकर हम सिर्फ अपने घर में ही देखें कि प्लास्टिक तथा दूसरे प्लास्टिक किन किन तरीकों से प्रविष्ट हो रहे हैं, तो हम स्थिति की गंभीरता का अनुमान सहज हो जाएगा। आज से 2-3 दशक पहले गांव देहात में प्लास्टिक प्राय नहीं मिलता था, लेकिन अब खेत खलियानों में भी पहुंच गया है। कृषि भूमि में प्लास्टिक का कचरा बिखरा हुआ मिलना अब सामान्य सी बात हो गई है। सब जगह पर प्लास्टिक की भरमार है। वह प्लास्टिक कीमत में अपेक्षाकृत सस्ता होता है, इसीलिए इसको लोग ज्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन यह जल्दी सलता गढ़ता नहीं है। भूमि को प्रदूषित करता हुआ लोग प्राय प्लास्टिक की बोतलों और पॉलिथीन की थैलियों को एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। इससे भूमि और महासागरों में प्रदूषण बढ़ रहा है। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक की बोतल, पॉलिथीन के थैले, फेंके हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खिलौने आदि नहरों, नदियों, झीलों जैसे जल निकायों को दूषित करते हैं। जलीय जीवधारी फेंके हुए प्लास्टिक को भूल से आहार समझकर खा जाते हैं।

जिससे उनके अंदर प्लास्टिक का जैव संचय हो जाता है। इसके कारण उनके अंदर घुटन पैदा होती है तथा उनकी मृत्यु तक हो जाती है। बड़ी संख्या में मछलियां और कछुए इसी वजह से हर साल मारे जाते हैं। प्लास्टिक से जुड़े प्रदूषण और इससे संबंधित प्रभावों से ग्रामीण इलाकों में भी पीड़ित है। प्लास्टिकों को बाग, बगीचों, तालाबों, चारागाहों में फेंक दिया जाने से महशी उन्हें गलती से खा लेते हैं, यही उनकी मौत तक का कारण बन जाता है। बरसात के मौसम में सड़क पर गिरा हुआ प्लास्टिक का कचरा बहकर पास के जलाशयों, नहरों, नालियों में चला जाता है। सलिश सामग्री की वजह से पानी की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। भराव क्षेत्र में फेंके गए प्लास्टिक के पानी के साथ मिलकर खतरनाक रासायनिक बन जाते हैं। यह रसायन भूमि की उर्वरता, जल भीतु में मिलकर पानी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं। फलतः यह भूमि जल प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। प्लास्टिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, थर्मोसेट या थर्मोसेट प्लास्टिक। थर्मोसेट प्लास्टिक जो एक प्रकार ठंडा होकर सख्त बन जाने के बाद उस आकार को बनाया जाता है, वह अपने मूल स्वरूप में वापस नहीं आ सकते। यह कठोर और टिकाऊ होते हैं। इन्हें वाहनों और हिस्से, पुर्जों, टायरों में इस्तेमाल किया जाता है। इनके उदाहरणों में पॉलीथीन, पॉलीविन, क्लोराइड शामिल है। इसके अलावा प्लास्टिक को जैव विविधता इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक के रूप में भी विविध किया गया है। उदाहरण स्वरूप पॉलीथीन की प्रयोग सोडा की बोतल, रस्सी, कॉलिन फाइबर भी होते हैं, जो उच्च घनत्व पॉलीथीन का इस्तेमाल दूध की बोतलों, पानी, प्राइवेथी प्रेशर रेशो के निर्माण में किया जाता है। पॉलीविन क्लोराइड सीवर पाइप विद्युत उपकरण बहुता से इस्तेमाल किया जाता है। जब भी अल्प घनत्व पॉलीविन का प्रयोग किया जाता है तो यह उच्च वर्गीकरण होके प्रयोगशाला में उपकरण या दोबारा उपयोग करने या रिसाइकिल के काम आता है। पॉलीविन के इस्तेमाल में काफ़ी कपिंग, जब भी नायलॉन का उपयोग, पैराशूट, टूथपेस्ट इनमें किया जाता है तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध पर भारत सरकार की पहल के विगत 18 जून को विश्व महासागर दिवस पर था। इस अवसर पर तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवहन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के समस्त एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने के लिए इंडिया प्लास्टिक चैलेंज की मुहिम छेड़ी, जिसकी शुरुआत से ही प्लास्टिक युक्त प्लास्टिक से मुक्त करने का आह्वान किया गया। अगस्त 2026 तक इसे पूर्ण रूप से अपने हाथ में लेने का संकल्प करने का और ख़त्म करने का, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हो जाने का संकल्प लिया गया। इसके अंतर्गत व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की प्रतिज्ञा दिलाई जा रही है। प्लास्टिक के हैकथान के अंतर्गत प्लास्टिक के कचरे को पुनः संग्रहण करके कचरा उपयोगी वस्तुओं का निर्माण व रिसाइकलिंग जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी विषय पर स्कूली बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्यों को प्लास्टिक कचरे के निस्तारण हेतु सुविधा आधारभूत ढांचा विकसित करने में सहयोग किया जा रहा है, जिससे कि स्वच्छ भारत मिशन और आगे आने वाले स्वच्छता के अभियान में पुनः रूप से इसे शामिल किया जा सके। प्लास्टिक ज़्यादातर रसायन तौर पर निष्क्रिय होते हैं, यह अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए न तो यह सड़ते हैं न ही गलते हैं और लंबी अवधि तक जस के तस पड़े रहते हैं। इसलिए प्लास्टिक का निपटाना आज एक कठिन और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रश्न बन गया है। बदलना होगा तौर तरीकों। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है, वह आने वाली कई सदियों तक धरती पर बना रहेगा। प्लास्टिक का निर्माण पेट्रोलियम यानी तेल से होता है। तेल कार्बन युक्त कच्चा माल है और प्लास्टिक बड़े कार्बन युक्त यौगिकों से बना होता है। तेल से बने प्लास्टिक नष्ट नहीं होते, लेकिन कई प्रकार के प्लास्टिक जैसे कि पीपी लो पॉलीथीन, हाई डाइज पॉलीथीन वाले प्लास्टिक पुनर्चक्रण किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। इसीलिए घरेलू इस्तेमाल में जैव अपघटनीय प्लास्टिकों का उत्पादक किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। यह सामान्य प्लास्टिक से थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन हमारे पर्यावरण की रक्षा के मद्देनजर यह जरूरी है। सर्वप्रथम प्लास्टिक के इस्तेमाल में तत्काल कमी लाने की जरूरत है। प्लास्टिकों के विकल्प को, जो कि पर्यावरण अनुकूलन उत्पादन से बने हुए होते हैं, हम उन्हें उपयोग में लाना चाहिए। खरीदारी के लिए बाजार जाते वक्त कपड़े या कागज की थैलियां साथ ले जाने की आदत डालनी चाहिए। दुकानदारों से भी अपेक्षित है कि वह प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल न करें। खाने पीने की सामान्य चीजें वह कुदरती पैक में रखकर बेच सकते हैं। समाज में ऐसे नवाचारों को बढ़ावा मिलना चाहिए जो प्लास्टिक कूड़े के रूप में मौजूद है, उनका ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का प्रबंध किया जाना चाहिए। प्लास्टिक से निधन बनाने के प्रयास सफलता मिल रही है, साथ ही जैव अघटनीय

0: प्लास्टिक के विकास पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को प्लास्टिक का उचित विकल्प मिल जाए जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक न हो। अर्थात प्लास्टिक से उपजे पर्यावरणीय संकट से बचने के लिए हमें कई पहलुओं पर एक साथ काम करना होगा, तभी हम इस गंभीर समस्या से पार पा सकेंगे। जाहिर है एक लंबी लड़ाई है जिससे समाज को पूरी तरह से उभरने में दशकों का समय लगेगा।
1: सौरभ, कार्यक्रम में अभी आपने सुनी वार्ता, विषय प्लास्टिक प्रदूषण और उसके परिणाम। वार्ताकार डॉक्टर कांता मीणा, प्रस्तुति श्रीमती बरखा तानवी व्यास, संयोजन श्री अमित सिंह का।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत कार्यक्रम विकास यात्रा। कार्यक्रम में आप जानेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के बारे में। आलेख और प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का।
1: आजादी का अमृत महोत्सव।

0: आजादी के अमृत महोत्सव में प्रस्तुत है भारत के हर क्षेत्र में बढ़ते कदमों पर आधारित विशेष कार्यक्रम विकास यात्रा। केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित हमारा कार्यक्रम विकास यात्रा।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम विकास यात्रा में। आज हम एक ऐसी योजना पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने देश के लाखों ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह। भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और गांवों की शक्ति वहां की महिलाएं हैं। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, तो न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा गांव विकास की ओर अग्रसर होता है। इसी सोच को साकार करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को संगठित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा छोटा समूह है जिसमें सामान्यतः 10 से 20 महिलाएं स्वेच्छा से जुड़ती हैं। ये महिलाएं नियमित रूप से छोटी छोटी बचत करती हैं, बैठकें आयोजित करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर समूह की बचत से एक दूसरे को ऋण भी उपलब्ध कराती हैं। समय के साथ समूह का बैंक से जुड़ाव होता है और उन्हें आजीविका बढ़ाने के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती है।

0: दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं को संगठित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने का आत्मविश्वास, वित्तीय प्रबंधन और सामाजिक जागरूकता का भी विकास करती है। आज देश के लाखों स्वयं सहायता समूह डेयरी पशुपालन, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक खेती, मसाला निर्माण, पापड़, अचार, अगरबत्ती, हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण और अनेक लघु उद्योगों से जुड़े हुए हैं। इन गतिविधियों से महिलाओं की आय बढ़ी है और परिवारों का जीवन स्तर भी बेहतर हुआ है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है बचत की आदत। जब महिलाएं नियमित रूप से छोटी राशि भी बचाना शुरू करती हैं, तो धीरे धीरे आर्थिक अनुशासन विकसित होता है। यही बचत आगे चलकर बड़े कार्यों की आधारशिला बनती है। समूह के माध्यम से महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली की जानकारी मिलती है। बैंक खाता संचालन, डिजिटल भुगतान, मोबाइल बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता जैसी जानकारियाँ उन्हें आधुनिक आर्थिक व्यवस्था से जोड़ती हैं। इससे वे आत्मविश्वास के साथ अपने आर्थिक निर्णय स्वयं लेने लगती हैं। स्वयं सहायता समूह केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन के भी महत्वपूर्ण माध्यम बने हैं। समूह की बैठकों में स्वच्छता, पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा, टीकाकरण, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर भी चर्चा होती है। इस प्रकार समूह समाज में जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जब महिलाएं संगठित होकर कार्य करती हैं, तो उनकी आवाज अधिक प्रभावी बनती है। वे ग्राम सभा में अपनी बात रखती हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करती हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहती हैं। इससे गांवों में महिलाओं की सामाजिक भागीदारी भी बढ़ती है। आइए जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वयं सहायता समूहों के बारे में क्या कहना है।
1: आज देश की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं, 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही है। स्व सहायता समूह हमने देश की आर्थिक प्रगति के लिए इन करोड़ों महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का संकल्प लिया। हम इन बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो लखपति दीदी बन चुकी है, और मेरा तो विश्वास है जिस काम को माताएं बहनें हाथ लगाती हैं ना, उस काम का गर्व भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे घर से शुरू हुआ काम एक आर्थिक आंदोलन बन जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के इसी सामर्थ्य को निखारने के लिए बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने इसके बजट को 5 गुना बढ़ा दिया। इन स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है। 20 लाख रुपया सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को नए कौशल और नई तकनीक से जुड़ने के रास्ते भी दिए जा रहे हैं। साथियों, आज देश की नारी शक्ति हर आशंका को परास्त करके, हर संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है।
0: इस योजना से लाभ लेने वाली ऐसी ही कुछ महिलाओं से बात की हमारे सहयोगी महेश उपाध्याय ने। आइए जानते हैं उन्हें इस योजना से क्या लाभ हुआ और कैसे वे स्वयं सहायता समूह में रहकर अपने कार्य को कुशलता से आगे बढ़ा रही हैं।
2: मेरा नाम खुशबू दिवाकर है। मेरे समूह का नाम भाग्यलक्ष्मी है। हमारे समूह में 10 महिलाएं हैं। हम 10 महिलाएं मिलके हैंडमेड ज्वेलरियाँ बनाते हैं, और सरकार ने हमको बहुत अच्छा प्लेटफार्म दे रखा है, जैसे अमृता हाट दे रखा है, और हमारे जैसे अजमेर में जीरो उद्योग के माध्यम से भी हमारे हर मंथली एग्जीबिशन लगती है, और उसमें हमारे समूह की जो भी महिला बनाती है ना, उस इन प्लेटफार्मों पर आके हम अपने प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा हमको बेनिफिट मिला है कि यहाँ पे हमारे कस्टमर बहुत अच्छे बने। मतलब अलग अलग जिलों के अंदर जाते हैं तो अलग अलग जिलों में हमारे कस्टमर बन गए। अब वो हमें कॉल करते कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, इतना इतना चाहिए, और फिर हम पार्सल के माध्यम से भी हम तक प्रोडक्ट अपने पहुँचाने लग गए। तो हम सरकार को तो तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफार्म दिया है, और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें और मतलब जैसे अभी जैसे 15 जिलों का ही आया है कि हमें पूरे 33 जिलों में भेजे, पूरे 33 जिलों के अंदर ये हुए, ताकि हम पूरे जिले में जा सके और हमारा प्रचार बहुत अच्छा हो सके।
3: मेरा नाम सुमन शर्मा है।

0: और मेरा समूह का नाम विधा एसएच जी है और मैं 2007 से इस एसएच जी का ग्रुप बनाकर जुड़ी हुई हूँ। महिलाओं को 30 महिलाओं को रोजगार भी दे रखा है और हर राजस्थान के कहीं भी कोई से भी जिले में एग्जीबिशन लगता है, हम पूरा प्रोडक्ट लेकर वहाँ जाते हैं और महिलाओं को प्रोत्साहन देते हैं कि भाई उनका प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं और उनको वो पैसा भी देते हैं। समूह बनाने से हमें एक फ़ायदा हुआ कि जो घर में महिलाएं थी जिनका पास कला थी लेकिन वो बाहर नहीं निकाल पा रही थी, तो ऐसी महिलाओं को जोड़कर उनकी कलाओं को बाहर निकालने के लिए हमने उनको प्रेरित किया और समूह बनाया। समूह बनाकर उनको वही रोजगार दिया जो उनको आता है। वो अपना जैसे दिवाली सीजन में डेकोरेशन का सामान बनाती हैं, बहुत यूनिक यूनिक आइटम बनाती हैं बहुत सी महिलाएं, लेकिन उनकी पहले कोई पहचान नहीं थी, आज उनकी पहचान है कि वो उनका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है। कुल हमने समूह के माध्यम से लोन लिया है PMFME का वाला, जिसमें हमने 5 लाख का लोन लिया था और करीबन सब चुक गया, अभी लास्ट किस्तें चल रही है और उससे हमें बेनिफिट भी मिला गवर्नमेंट की तरफ से, हमें सब्सिडी मिली 35%। मेरे साथ वैसे तो 100 महिलाओं का NGO बना रखा है मैंने, उसमें 300 महिलाएं मेरे साथ काम कर रही हैं अभी भी। जी हाँ बिल्कुल, मैं खुद भी रोजगार प्राप्त कर रही हूँ, एक रोजगार देने वाली वुमेन बन गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं इस तरह से काम करें कि आने वाली महिलाओं को रोजगार दे सके।
1: मेरा नाम जन्नत है, तेजरसर गांव से हूँ। हम लोग 2018 में स्वयं सहायता समूह से जुड़े थे तो हम धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आज जो बड़े बड़े अफसर नेता लोग जो हमारे काम को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं और हमारी सारी गरीब महिलाएं हैं वो भी अपना रोजगार करने लगी है। ये पहले तो हमें डर लगता था कि बड़े लोग आएंगे कैसा लगेगा, लेकिन जब से स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं ना तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग रोज़ यहीं रहते हैं, यहीं इनके साथ रहते हैं। हमें कभी ऐसा फील नहीं होता कि डर लगेगा, कोई क्या कहेगा क्या बोलेगा। हम खुशी से कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसे खुशी से अटेंड करते हैं अच्छे से, और वहाँ हमें अच्छा लगता है, बहुत बड़े बड़े लोगों से जानकारी मिलती है। कहीं भी जाते हैं कोई भी ऑफिस में तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि आगे जाके क्या बोलेंगे, कोई भी ऑफिस हो कहीं भी तो हम आसानी से वहाँ बोल सकते हैं, जा सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। सब कुछ हमें ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से ही मिला है, पहले हम घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। जब से ये ग्रामीण आजीविका शुरू हुई है ना उसके बाद से हम बहुत कुछ सीखे हैं।
2: श्रोताओं, इन महिलाओं की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनकर आपको यह तो पता लग ही गया होगा कि यदि किसी महिला के पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है तो स्वयं सहायता समूह उसके लिए सहारा बनता है। बैंक से मिलने वाले ऋण की सहायता से वह छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और समय पर ऋण चुकाकर आगे अपने कार्य का विस्तार भी कर सकती हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और परिवार की आय में वृद्धि होती है। श्रोताओं, यदि आपके भी गाँव में या आसपास में अभी तक कोई भी स्वयं सहायता समूह नहीं बना है तो इच्छुक महिलाएं ग्राम पंचायत, ग्राम संगठन, संबंधित ब्लॉक कार्यालय अथवा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर समूह का गठन कर सकती हैं। सरकार द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अन्य विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब गाँव आत्मनिर्भर बनेंगे और गाँव तभी सशक्त होंगे जब वहाँ की महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होंगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह इसी दिशा में एक प्रभावी और सफल पहल है। ये समूह केवल बचत और ऋण का माध्यम नहीं बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान, सहयोग और समृद्धि का आधार है। ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर अपने परिवार, गांव और राष्ट्र के विकास के लिए और अधिक प्रभावी योगदान दे सकेंगी। तो श्रोताओं, आज हमने जाना दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के बारे में। इसी उम्मीद के साथ कि विकास की ये यात्रा अनंत तक जारी रहेगी, बरखा थानवी व्यास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: ये था हमारा विकास यात्रा का आज का अंक। आलेख और प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, संयोजन था श्री अमित सिंह का।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विकास यात्रा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के बारे में।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं प्रस्तुत हैं हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। इंडोनेशिया में कल प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज कोटा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बन रही मुकुंदरा टनल परियोजना का निरीक्षण करेंगे। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान के निपटारे पर समझौता हुआ और मॉनसून के अगले दो दिनों में बीकानेर संभाग और आसपास के इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के प्रवास के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में दोनों देशों के शीर्ष व्यापारिक नेताओं की सभा को भी संबोधित करेंगे। उनका प्रवासी भारतीयों की एक विशाल सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने जकार्ता में भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह में भाग लिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में भारत में बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर स्टार्टअप क्रांति और सामाजिक विकास कार्यक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।
1: बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। जब ऐसी व्यवस्था बनती है

0: तब लोगों का भरोसा बढ़ता है, तब लोगों में आत्मविश्वास आता है और तब 25 करोड़ भारतीय गरीबी को हरा करके, गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शान से जिंदगी जीने आरंभ करते।
1: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करेंगे। एक्सप्रेस वे पर कई जगह सड़क टूटने और निर्माण में खामियों की खबरों के मद्देनजर वे सड़क निर्माण की गुणवत्ता को परखेंगे। श्री गडकरी दोपहर में दौसा और उसके बाद बूंदी जिले में स्थित लबान इंटरचेंज पहुंचेंगे। यहां से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ इस निरीक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री कोटा के पास मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व के नजदीक बन रही दरा टनल का जायजा लेंगे और निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। एनएचएआई के राजस्थान जनरल मैनेजर संजय कदम ने बताया कि निर्माण कार्य में कमी पाए जाने से संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाटूश्याम मंदिर से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्रस्तावित रेलवे स्टेशन भवन का निर्माण राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में मंदिर ट्रस्ट के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि नए रेलवे स्टेशन के निर्माण से खाटूश्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक रेल सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये स्टेशन सीकर रिंगस रेलखंड पर पलसाना और बावड़ी ठिकरिया स्टेशनों के बीच बनाया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए रेल संपर्क और यात्री सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की गई। जयपुर के कमला नेहरू नगर में कल हुई सड़क दुर्घटना की जांच के लिए जिला प्रशासन ने 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने समिति को 5 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। समिति में पुलिस, परिवहन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जयपुर सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड के अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना के कारणों, राहत और बचाव कार्यों तथा विभिन्न विभागों की कार्रवाई की समीक्षा करेगी। गौरतलब है कि इस हादसे में बेकाबू तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: नर्मदा नदी के जल के बेहतर उपयोग को लेकर लंबित नर्मदा अवार्ड लाभार्थी राज्यों राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सहमति बन गई है। कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में हुई बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस समझौते से सहकारी संघवाद की भावना और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े इस निर्णय से जालौर और बाड़मेर सहित पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को फायदा मिलेगा। प्रदेश की जल सुरक्षा को भी नई मजबूती मिलेगी। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसलों की बुवाई, मॉनसून की स्थिति और अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में हुई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अगले दिनों में राजस्थान गुजरात हरियाणा और पंजाब में वर्षा की संभावना के चलते बुवाई में तेजी आने की उम्मीद है। इस दौरान कम वर्षा वाले जिलों के लिए आपातकालीन कार्य योजना बनाने सहित उर्वरकों और बीजों की उपलब्धता की समीक्षा की गई। साथ ही जलाशयों में जल भंडारण पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री श्री चौहान ने कल ही प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य कृषि उद्यमियों और किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है विकसित भारत के लिए।

0: विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: राज्य सरकार ने उद्यानिकी फसलों के सुरक्षित भंडारण और बेहतर विपणन को बढ़ावा देने के लिए सोलर क्रॉप ड्रायर पर 40% तक अनुदान देने की योजना शुरू की है। योजना के तहत 70 और 100 किलोग्राम क्षमता वाले ड्रायर पर अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से धनिया, मेथी, टमाटर, मिर्च और पालक जैसी फसल उगाने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। 12 जिले में रबी सीजन के दौरान बड़े पैमाने पर धनिया की खेती होती है। एक किसान अधिकतम 5 इकाइयों की खरीद पर 7,00,000 रुपए तक का अनुदान प्राप्त कर सकेगा। इससे फसलों की गुणवत्ता बनाए रखने और किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिलने में सहायता होगी। और अब मौसम। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले दो दिनों में बीकानेर संभाग और आसपास के इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मॉनसून की उत्तरी रेखा बाड़मेर, जोधपुर और राजगढ़ से होकर गुजर रही है। वहीं आज से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आज बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर को छोड़कर समूचे राज्य में बरसात का येलो अलर्ट है। वहीं विभाग ने 12 झालावाड़ और कोटा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच कल करीब 20 शहरों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। डूंगरपुर में कल रात अच्छी बारिश हुई। भरतपुर में देर रात से शुरू हुआ बरसात का दौर सुबह तक जारी रहा। सवाईमाधोपुर और नागौर में रात भर बरसात की झड़ी लगी रही। डीग में सुबह से ही बारिश का सिलसिला बना हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। इंडोनेशिया में कल प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज कोटा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बन रही मुकुंद्रा टनल परियोजना का निरीक्षण करेंगे। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान के निपटारे पर समझौता हुआ। और मॉनसून के अगले दो दिनों में बीकानेर संभाग और आसपास के इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग NCERT।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
3: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
3: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
3: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
3: जी विमलेश जी, श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
3: जी।
2: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
3: जी। तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
3: श्रोताओं आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800

0: 4405599 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी।

इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो,

0: हाँ ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोंस लेते हैं। और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक

0: राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
1: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
2: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
3: लेकिन मिस्टर निजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
1: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
2: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
3: कैसे चित्र?
2: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
1: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
2: क्यों नहीं, अभी चलिए।
1: चलिए
2: आइए।

0: हिस्सा मानते हैं।
1: लेकिन मिस्टर नीत जी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
0: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
1: कैसे चित्र?
0: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
0: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
0: आई
2: देखो वेलेंडा, ये अजगर का चित्र।
1: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
1: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीट जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
0: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
0: हाँ।
2: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
0: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
0: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
1: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
0: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलेंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई, और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
1: वाकई कमाल है।
0: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
1: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
0: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
0: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
1: सच?
2: धन्यवाद।
3: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
4: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं, एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग NCERT। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है नोटबुक, स्वर है मोहित चौहान और विशाल मिश्रा के।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

यारियां टू, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और मनन भारद्वाज की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है मर्डर टू, स्वर हैं क्षितिज तारे, सेम भट्ट और मिथुन के।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

रेखा भारद्वाज और जगजीत सिंह की आवाज़ों में फिल्म तुम बिन टू का ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल पर। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए धड़क फिल्म से, स्वर है अजय अतुल का।

आशिकी 2 फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अंकित तिवारी के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है एक विलेन, स्वर है अंकित तिवारी का।

ये गीत आप सुन रहे थे अंकित तिवारी की आवाज़ में। फिल्म का नाम था एक विलन। गीत के बोल लिखे थे मनोज मुंतशिर ने और संगीत था अंकित तिवारी का।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आपको सुनाए गए भूले बिसरे गीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। कृपया हमारे अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 11 बजने को हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म यादों की बारात से। इस गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी ने। बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी साहब के और संगीत है RD बर्मन साहब का।

यशुदास और हेमलता की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना। बोल थे रविंद्र जैन के और संगीत भी रविंद्र जैन का था। लीजिए अगला गीत, हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लैला से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। गीत के बोल हैं सावन कुमार के और संगीत है उषा खन्ना का।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना फिल्म चलते चलते से। किशोर कुमार का साथ दिया था अमित खन्ना ने, बोल थे अमित खन्ना के और संगीत था बप्पी लहरी का। लीजिए अगला गीत फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अनाड़ी से। इस गीत को गाया है मुकेश ने, बोल हैं शैलेंद्र के और संगीत है शंकर जयकिशन का।

और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म का नाम था देवदास। बोल थे साहिर लुधियानवी साहब के और संगीत था एसडी बर्मन साहब का। लीजिए अगला गीत सुनिएगा फिल्म अनामिका से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, बोल लिखे हैं मजरूर सुल्तानपुरी ने और संगीत है आरडी बर्मन का।

आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म आंचल से, बोल थे प्रदीप के। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है छोटे नवाब। बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम था आखिर क्यों, बोल थे इंदिवर के और संगीत था राजेश रोशन का। लीजिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, फिल्म दूरियां से। इस गीत को गाया है भूपेंद्र और अनुराधा पौडवाल ने, बोल हैं सुदर्शन फाकिर के और संगीत है जयदेव का।

फिल्म साथ साथ से ये गीत अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में। फिल्म इस गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत था कुलदीप सिंह का। लीजिए फिल्म संगीत का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नौबहार से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और संगीत है रोशन का।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। लीजिए अब सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार पूरी योजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वायडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में

0: तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दोपहर के ठीक 12:05 हुए हैं। ये समय है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनके विवरण का।

हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 पर सुना ना भूलिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे शाम 6:40 पर।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू केंद्र से सुनना ना भूलिएगा आपसे कुछ ही देर में लोक संगीत 12:10 से। वहीं फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 12:40 से। दोपहर 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपकी सखी साक्षी गोस्वामी। कार्यक्रम में चर्चा रहेगी घर बैठे फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन ट्यूशन, शिशु के जन्म के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन की पहचान और उपचार, कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी कवच, कमर दर्द की समस्या, विटामिन D3 का महत्व, स्वयं सहायता समूह योजना पर आधारित विशेष कार्यक्रम कदम बढ़ाए चलो। और इसी के साथ कार्यक्रम का एक और विशेष अंग रहेगा, वो रहेगी भेंटवार्ता। स्वयं सहायता समूह में क्लस्टर मैनेजर की भूमिका विषय पर श्रीमती ममता कंवर से श्रीमती मधु शर्मा की बातचीत। कार्यक्रम के रेगुलर सेगमेंट्स रसोई से और ब्यूटी टिप्स इसके भाग रहेंगे। और इस भेंटवार्ता की प्रस्तुति रहेगी श्रीमती पुनीत विश्नोई के द्वारा और संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। दोपहर फिल्म संगीत सुनना ना भूलिएगा 2:30 से।

शाम 5:05 पर यानी हमारी सायंकालीन सभा में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आज की बात में चर्चा रहेगी अपनी बात रखना सीखें। लघु जानकारी के विषय रहेंगे पश्चिमी घाट भारत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, अनुच्छेद 19, यूपीआई। और इसी के साथ कार्यक्रम के रेगुलर सेगमेंट्स रोजगार समाचार और क्विज टाइम भी कार्यक्रम का अंग रहेंगे। शाम 6:05 पर सुनना ना भूलिएगा फिल्म संगीत।

शाम 7 बजे ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे बुआई से पूर्व बीज उपचार का महत्व, विलायती बबूल से पर्यावरण को नुकसान, बालिका व महिला उत्थान के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं, राज किसान साथी पोर्टल और कार्यक्रम के रेगुलर सेगमेंट्स, लोकगीत, मौसम की जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जानकारी भी दी जाएगी।

7:45 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत और फिल्म संगीत का समय रहेगा रात्रि 8 बजे से। लोक संगीत का आनंद लीजिएगा 8:30 पर और फिल्म संगीत हम रात को सुनवाएंगे आपको 9:15 से। एक बार पुनः 10 बजे फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा और अगर आप शास्त्रीय संगीत के शौकीन हैं तो सुनना न भूलिएगा रात्रि 10:30 पर आज मणिलाल नागर को, जिनमें सितार पर राग बागेश्वरी बजाएंगे और तबले पे संगत देंगे हिदायत खां। श्रोताओं, ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। दोपहर के 12:10 होने को हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर दोपहर के ठीक 12:40 में है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से। इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने, बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत है RD बर्मन का।

ये गीत आपने सुना फिल्म टू स्टेट से। इस गीत को गाया था अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा ने। बोल थे अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत था शंकर एहसान लॉय का।

लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स से। इस गीत को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की जोड़ी ने, बोल है स्वानंद किरकिरे के और संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

0: फिल्म आजा नशले से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत को गाया था सोनू निगम और श्रेया घोषाल की जोड़ी ने। बोल थे जयदीप साहनी के और संगीत था सलीम सुलेमान का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 1 बजने को है। लीजिए अब सुनिएगा हमारे जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: कार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर निरीक्षण कर रहे हैं। श्री गडकरी एक्सप्रेसवे पर कई जगह सड़क टूटने और निर्माण में खामियों की खबरों के मद्देनजर सड़क निर्माण की गुणवत्ता को परख रहे हैं। श्री गडकरी दोपहर में बूंदी जिले में स्थित लबान इंटरचेंज पहुंचेंगे। यहां से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ इस निरीक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीनों नेता कोटा के पास मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व के नजदीक बन रही दरा टनल का जायजा लेकर निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये टनल बनाई जा रही है। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा का गोपालपुर मंडाना में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तथा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। राज्य में समान नागरिक संहिता 2026 UCC के प्रस्तावित प्रारूप पर आमजन से सुझाव लेने की प्रक्रिया जारी है। विभिन्न जिलों में आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों तथा शिक्षाविदों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज पाली में वर्चुअल बैठक हुई। इसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं प्रशासन ने अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कलेक्ट्रेट, पंचायत समितियों और नगर निकायों के सूचना पट्टों पर QR कोड भी लगाए हैं। इनके माध्यम से आम नागरिक ऑनलाइन सुझाव दर्ज करा सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकेथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। विद्यार्थी, नवोन्मेषक, स्टार्टअप्स, शोधकर्ता, डिजाइनर, उद्यमी तथा हथकरघा पेशेवर पंजीकरण कराने के साथ ही अपने विचार संबंधित वेबसाइट पर साझा कर सकते हैं। चुनी हुई टीमें 1 अगस्त को अपने समाधान जूरी के सामने प्रस्तुत करेंगी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश स्थानों पर झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई और कहीं कहीं जमकर बादल बरसे। मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक 9.5 सेंटीमीटर बरसात कोटा के रामगंज मंडी में दर्ज की गई। विभाग ने आज उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी तथा बहुत भारी बरसात की संभावना जताई है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। झुंझुनू में जल्द ही विवाह पूर्व संवाद केंद्र शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल तेरे मेरे सपने के तहत ये केंद्र बनाया जा रहा है। केंद्र में विवाह से पहले युवक युवतियों और उनके परिवारों को वैवाहिक जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जाएगा। इस केंद्र पर आपसी संवाद, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक जिम्मेदारियां, विवाद समाधान, लैंगिक समानता और कानूनी अधिकारों जैसे

0: विषयों पर मार्गदर्शन किया जाएगा। प्रदेश में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना में पहले ऑनलाइन आवेदन की तिथि 30 जून निर्धारित थी। विभाग के निदेशक ललित कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थाओं को सुविधा को देखते हुए ये तारीख बढ़ाई गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके तहत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 1:05 हुए हैं। समय है बहनों के अपने कार्यक्रम महिला जगत का। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हैं आपकी रेडियो सखी श्रीमती साक्षी गोस्वामी।

माँ बनने का सफर सिर्फ मुस्कान नहीं, कभी कभी मौन आंसुओं से भी होकर गुजरता है। हर माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी उस जन्म के बाद उसे खुद को दोबारा जन्म देना पड़ता है। एक घर में नन्ही सी किलकारी गूंजी। परिवार में खुशियों का माहौल था। सभी नए मेहमान के स्वागत में व्यस्त थे, लेकिन उस बच्चे की माँ धीरे धीरे सबसे दूर होती जा रही थी। वह बिना किसी कारण के रो पड़ती, हर समय थकी हुई सी रहती, बच्चे को गोद में लेने से भी घबराती और बार बार यही सोचती कि क्या मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। परिवार को लगा कि ये तो सामान्य कमजोरी है, हर किसी के साथ होता है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो ये था बहनों कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही थी। क्या है ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मैं बताऊंगी। उससे पहले स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में, और स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी अपने सखी साक्षी गोस्वामी। तो कीजिए स्वीकार मेरा स्नेह भरा नमस्कार। हाँ तो बहनों, हम बात कर रहे थे पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। शिशु के जन्म के बाद माँ के शरीर में हार्मोनल तेजी से बदलते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, साथ ही नींद की कमी, नई जिम्मेदारियां, शारीरिक थकान और मानसिक दबाव मिलकर कई महिलाओं को गहरे अवसाद की ओर ले जा सकते हैं। यह कोई कमजोरी नहीं है या फिर नाटक भी नहीं है उस महिला का, बल्कि ये तो वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है, जिसे समय पर पहचानना और समझना बेहद जरूरी है। यदि बच्चे के जन्म के बाद 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक माँ में ये लक्षण दिखाई दें, तो आप इसे गंभीरता से लीजिए। जैसे कि यदि माँ बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार रो रही है, हर समय उदासी या खालीपन उसको महसूस हो रहा है, पहले जिन कामों में उसको खुशी मिलती थी अब उसकी रुचि ही खत्म होती जा रही है, बच्चे से जुड़ाव महसूस ना होना या फिर उसको संभालने में डर लगना, बहुत ज़्यादा चिंता या घबराहट हो रही है, उसको या तो नींद नहीं आ रही है या फिर बहुत ही ज़्यादा सो रही है,

खुद को असफल माँ समझती है या फिर हर समय थकान और कमजोरी महसूस हो रही है, ध्यान केंद्रित करने में भी उसको कठिनाई हो रही है। बहनों, ऐसे में परिवार होने के नाते हम नई माँ की कैसे मदद कर सकते हैं? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। एक माँ को सिर्फ आराम करो ये कह देना पर्याप्त नहीं होता, उसे समझने, सुनने और भावनात्मक सहारे की भी जरूरत होती है। उसकी बात बिना टोके सुने, घर के कामों और बच्चों की देखभाल में सहयोग करें, उसे पर्याप्त आराम दें और नींद का अवसर भी दें। उसकी भावनाओं को ड्रामा या कमजोरी कहकर तो बिल्कुल भी ना टालें। याद रखिए बहनों कि जिस तरह बच्चे के जन्म के बाद माँ के शरीर की देखभाल आवश्यक होती है, उसी तरह उसके मन की देखभाल भी आवश्यक होती है। एक स्वस्थ माँ ही बच्चे को स्वस्थ बचपन दे सकती है। तो आइए, माँ बनने वाली हर महिला से केवल ये ना पूछें कि बच्चा कैसा है, बल्कि ये भी पूछें कि आप कैसी हैं। यकीन मानिए बहनों, कभी कभी यही एक सवाल किसी माँ के जीवन में नई उम्मीद जगा सकता है। तो आइए, जगाइए उम्मीद हर औरत के मन में और ये सिलसिला थमने ना दें।

बहनों, अभी हम बात कर रहे थे ना डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन को दूर करने का एक सरल उपाय है स्वयं को व्यस्त रखना। जी हाँ बहनों, हम स्वयं को व्यस्त रखकर किसी भी तरीके की डिप्रेशन से या एंजाइटी से बच सकते हैं। आप स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ सकती हैं और देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी निभा सकती हैं। हम हर महीने के दूसरे बुधवार को आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम कदम बढ़ाए चल, जिसमें हम विभिन्न महिलाओं के अनुभवों से आपको अवगत कराते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं कदम बढ़ाए चलो का एपिसोड नंबर 22, जिसमें स्वयं सहायता समूह में क्लस्टर मैनेजर की भूमिका क्या है, इस विषय में बताएंगी श्रीमती ममता कंवर, जिनसे भेंट कर रही हैं हमारी ही अपनी सखी मधु शर्मा।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को हमारा नमस्कार। कदम बढ़ाए चलो कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी बहनों का हार्दिक स्वागत है। बहनों, स्वयं सहायता समूह योजना पर आधारित इस कार्यक्रम में आमंत्रित मेहमान से हम बात करेंगे, उनकी पसंद का गीत भी होगा और एक सवाल भी होगा जिसका जवाब हम आपको देंगे इस कार्यक्रम के अंत में। लेकिन सबसे पहले, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं देश के विकास में अपनी भागीदारी बढ़ा रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि देश में चल रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के तहत देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं और आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार कर रही हैं। बहनों, ऐसा भी माना गया है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण महिला नेटवर्क है। सखियों, अब सुनिए वो सवाल जो हमेशा की तरह हम आपसे पूछते हैं और इसी कार्यक्रम के अंत में सही जवाब बताते हैं। तो आज का सवाल है, क्या स्वयं सहायता समूह में पुरुष भी सदस्य बन सकते हैं? सवाल एक बार फिर दोहरा देती हूँ। सवाल है, क्या स्वयं सहायता समूह में पुरुष भी सदस्य बन सकते हैं? इस सवाल का सही जवाब आपको मिलेगा कार्यक्रम के अंतिम चरण में। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के मेहमान से मिलते हैं। आप हैं श्रीमती ममता कंवर। आप शेरेरा क्लस्टर की क्लस्टर मैनेजर हैं।

0: आज के कार्यक्रम में हम आपसे यही जानेंगे कि स्वयं सहायता समूह में क्लस्टर मैनेजर की भूमिका क्या होती है। ममता जी, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो ममता जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप स्वयं सहायता समूह में क्लस्टर मैनेजर किसे बनाते हैं, या फिर वो क्लस्टर मैनेजर की योग्यता क्या होती है?
1: क्लस्टर मैनेजर की योग्यता जो हमारे SHG होते हैं स्वयं सहायता समूह में, जो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट जो महिला होती है, वो जो सदस्य जुड़ी हुई होती है, उसी को हम ना स्वयं सहायता समूह में जो वैकेंसी होती है उसमें फॉर्म भरवा के, और उसको ग्रेजुएट होनी जरूरी है तो उसको हम क्लस्टर मैनेजर के लेवल पे फॉर्म भरवा के, वहाँ हमारे इंटरव्यू होता है ब्लॉक में और एग्जाम भी होता है, उसके बाद में वहाँ मतलब रिजल्ट आता है, उसके बाद में हम घोषित करते हैं हमारे CLF में, उसको क्लस्टर मैनेजर बनाते हैं।
0: तो अब आप ये बताइए कि क्लस्टर मैनेजर के मुख्य कार्य क्या है, या फिर जो क्लस्टर मैनेजर की आपके ऊपर कई जिम्मेदारी होती होंगी, तो वो जिम्मेदारियाँ कौन कौन सी है वो आप हमें ज़रा बताइए।
1: जैसे क्लस्टर मैनेजर की मतलब सबसे पहले जिम्मेदारी यानी है उसका व्यवहार सबके लिए एक समान होना चाहिए, यह भी उनकी जिम्मेदारी है। और जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन में हमारे जो SHG चलते हैं, जो SHG है उनकी निगरानी करना उनकी जिम्मेदारी होती है, और उनकी बैठकों का समय पर हो रही है या नहीं हो रही है, और महिलाओं को कुछ रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही है नहीं बना रही है, यह क्लस्टर मैनेजर की जिम्मेदारियाँ होती हैं। और उसके बाद में जैसे हमारे ना हम महिलाओं को जैसे ना रोजगार दिलाते हैं, जैसे अब साबुन बनाने का काम है, पापड़ बनाने का काम है, जैसे हम उनको रोजगार देते हैं, तो वो हम हमारे क्लस्टर मीटिंग रखते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं, जैसे मेरे पास 15 पंचायत है तो 15 पंचायतों की महिला आती है वहाँ पर। उसके बाद में हमारा स्टाफ लगा रखा है हमने, जैसे हमारे पास क्लस्टर कोऑर्डिनेटर भी होते हैं जो गाँव में हम लगाते हैं, जैसे क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के पास में 6 गाँव या 7 गाँव देते हैं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर को, तो वो क्या समय समय पे वहाँ जाती है, मीटिंगें करवाती है, अगर उससे कोई काम वहाँ समस्या होती है तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन देती है। उसके बाद हम क्लस्टर मैनेजर वहाँ जाते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सभी महिलाओं को सक्षम बनाए।
0: ये CLF क्या होता है, इसके बारे में भी आप जरा हमें बताएं।
1: CLF जैसे हमारे गांव होते हैं, ठीक है, गांव के बाद जैसे पंचायत होती है, तो 15 पंचायत का एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनता है, जो हमारे जैसे पहले SHG बनते हैं, SHG के बाद में VO बनता है, जैसे वो बनता है एक गांव में VO बनता है, वो मतलब SHG को जोड़ के VO बनाते हैं ग्राम संगठन, तो वहाँ हम पहले ग्राम संगठन में SHG को जोड़ते, ग्राम संगठन जैसे 15 पंचायतों के जैसे मेरे पास 22-23 ग्राम संगठन है, फेडरेशन बनाने के बाद में वहाँ पे अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जैसे कार्यकारिणी समिति बनती है हमारे, उसके बाद में वो कार्यकारिणी समिति बना करके हम एक आम सभा रखते हैं, आम सभा रख के क्लस्टर का उद्घाटन करते, उद्घाटन करके उसके बाद में क्लस्टर मैनेजर की वैकेंसी निकलती है, क्लस्टर मैनेजर की निकलती है, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की निकलती है और लेखापाल की निकलती है जो हमारे लेखा जोखा करती है, उसकी वैकेंसी निकलती है। उसके बाद में सभी गांवों में हम पैम्पलेट छपा के सभी VO और SHG तक हम पहुंचाते, वहां से जो गरीब महिला है, अति गरीब महिला है, उनकी बहू है, जो महिला होती है वो हमारा फॉर्म उनका वैकेंसी में फॉर्म भरवा देते, उसके बाद में हमारे ब्लॉक लेवल पे उनका एग्जाम होता है, एग्जाम करवा के क्लस्टर की शुरुआत कर देते हैं।
0: अब आप ये बताइए ममता जी कि कितने ग्राम पंचायतों पर एक क्लस्टर बनता है?
1: कम से कम 10 ग्राम पंचायत होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16 पंचायत होनी चाहिए।
0: इसमें गांवों की संख्या कोई
1: हाँ,
0: सीमित
1: गांव
0: नहीं
1: की
0: है, या
1: संख्या
0: फिर
1: कोई सीमित नहीं है, जैसे पंचायत में आने वाले वो गांव जैसे कम से कम 26-27 गांव तो ऐड हो जाते हैं।
0: अब ये बताइए कि यदि कोई SHG बैठक नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे?
1: जैसे हमारे CLF में है, हमने जैसे ना उप समितियाँ बना रखी है, जैसे कि बैंक लीकेज कमेटी और SHG लीकेज कमेटी, तो वहाँ क्या है वो कमेटी, हम वो वहाँ तक कमेटी को लेकर वहाँ जाएंगे, हम महिलाओं से बात करेंगे और महिलाओं से पूछेंगे वहाँ पे कि आपके क्या समस्या आ रही है, आप क्यों नहीं करवा रहे हो, या फिर समय पे SHG की निगरानी क्यों नहीं कर रहे हो, या हमारे में कमी है, तो वो महिलाओं से मिलके उस SHG को वापस सरकारी योजना से जोड़ के उसका वापस रिवाइज करवा देंगे। और जैसे हम SHG का नया गठन करते हैं जैसे, तो बाहर से जैसे हमारी CRP टीम बुलाते हैं, जैसे हमारी CRP टीम वो आती है, जैसे 3-3 या 4 मेंबर होते हैं उसमें, वो महिला है ना आती है, ठीक है, क्लस्टर में, उसके बाद हम उनको गांव में या पंचायत में भेजते हैं, तो वहाँ पे जाके वो महिला अपने ना गांव में 3 दिन तो सर्वे करेगी सबकी, जैसे अति गरीब परिवार होते हैं, जैसे गरीब परिवार अति गरीब परिवार, वो पहले चेक करेगी कौन सा परिवार जुड़ा है कौन सा नहीं जुड़ा है, जो नहीं जुड़ा है उसको वो जोड़ती है, उसके बाद में वो SHG बनाएगी, नया गठन करेगी, नया गठन करने के बाद में वो उसका 3 महीने के बाद T1 अकाउंट खुलता है, अकाउंट

0: T1 की राशि आती है हमारे जो सरकार हमें देती है 15,000 रुपये T1 की राशि, तो उससे क्या है उनको SHG चलाने में अपना मतलब सक्षम हो जाती है महिला। उसके बाद T2 की राशि आती है 75,000 रुपये, वो महिला अपने आप मतलब अपने काम करती है, रोजगार खोल सकती है, आजीविका बढ़ाने का उनको साधन मिल जाता है।
1: अब ये बताइए कि क्लस्टर मैनेजर होने के नाते आप महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जोड़ने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे?
0: क्लस्टर मैनेजर होने के नाते जैसे हम जाते हैं गांव में तो महिलाओं को बताएंगे, जैसे कि मैं खुद समूह में जुड़ी थी।

0: बाहर निकलना सीखी। एक दो बार मैंने मीटिंग करी, पहले मैं समूह सखी थी, समूह सखी बनने के बाद मैंने यहाँ पे सीएलएफ में गई। सीएलएफ में जाके मैंने अपना वैकेंसी निकली तो मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म भर के मैं मैनेजर लेवल तक आई। और जैसे महिलाओं को बोलेंगे कि हम रोजगार आपको दिलाएंगे, जैसे उनको प्रेरित करेंगे, जैसे हमारे आजीविका से जोड़ने के लिए, तो हमारे उनको फायदा के बारे में बताएंगे, उसके बाद में उनको सीएलएफ में जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे।
1: यानी कि आप अपने अनुभवों के आधार पर महिलाओं को प्रेरित करते हैं कि मैंने ऐसे किया तो ये हुआ,
0: हाँ
1: ऐसे
0: जी
1: जिसे
0: जी जी
1: जुड़ी,
0: जैसे
1: यहाँ तक
0: पहले तो
1: पहुँची।
0: हमें राजीविका का फायदा बताएंगे, जैसे राजीविका में जुड़ने के बाद महिला, राजीविका जुड़ने से पहले महिला कैसी थी और राजीविका में जुड़ने के बाद महिलाओं को क्या मतलब मिला, बेनिफिट मिला या खुद के पैरों पे खड़े होने का हौसला मिला। पहले महिला
1: महिलाएं
0: घर तक
1: महिलाएं
0: सीमित थी,
1: आत्मनिर्भर बनी इससे जुड़
0: आत्मनिर्भर
1: के।
0: बनी, और पहले महिला घर तक सीमित थी। अब महिला मतलब अकेली जयपुर भी जाती है ट्रेनिंग करने के लिए, कहीं भी चली जाती है, वो महिला खुद के पैरों पर सक्षम हो चुकी है।
1: अभी आपने एक सवाल के जवाब में बैंक लिंकेज का नाम लिया था, तो आप ये बताइए कि ये बैंक लिंकेज क्या होता है?
0: जैसे बैंक लिंकेज, जैसे हमारे एसएचजी होता है, ठीक है, एसएचजी जैसे 6 महीना हो जाता है तो उसके बाद में उसकी लोन फाइल भरते हैं हम, 10 महिलाओं की लोन फाइल भरते हैं, तो लोन फाइल भर के हम बैंक में देते हैं, और फिर बैंक वाले हम विजिट करते हैं तो उनको फर्स्ट लोन देते हैं 1.5 लाख का। 1.5 लाख का जैसे एसएचजी को एसएचजी है, ठीक है, उसको काम शुरू करना है तो बैंक हमें सहायता राशि देती है, उसके बाद में 12% ब्याज लगता है, उसके बाद वो अपने किस्तों के रूप में वापस से अपनी राशि भरवा लेते हैं। इससे क्या है, हमारे एसएचजी चलाने में महिलाओं को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, कि वो ऐसे तो मतलब उन बचत करते हैं तो बचत से तो इतना पैसा होता नहीं है, तो बैंक हमें राजीविका के आधार पर लोन
1: लोन देती
0: करती है,
1: है,
0: बैंक लिखे जो बोलते हैं।
1: यानी कि बैंक के लेन देन का कार्य करने के लिए आप बैंक लिंकेज का यूज़
0: हाँ
1: करते
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ
1: ममता जी, यदि आपकी टीम में जैसे कोई विवाद हो जाए तो आप क्या करेंगे?
0: जैसे हमारी टीम में अगर विवाद हो जाए तो हम हमारे सीएलएफ में सभी बैठेंगे, कार्यकारिणी समिति है हमारी, सीएलएफ के ओबीज है, सब बैठ के वहाँ बात करेंगे, मनमुटाव है उसको दूर करेंगे, और सभी पहले पूछेंगे भाई क्या बात है क्या नहीं है, तो हम अपने सीएलएफ की बात सीएलएफ स्तर पे ही निपटा कर उसका निर्धारण करेंगे।
1: आप जैसे क्लस्टर मैनेजर हैं तो आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी होगा, है ना? तो आपके हिसाब से, है ना, क्लस्टर मैनेजर को कितना ज्ञान कंप्यूटर का होना आवश्यक है?
0: क्लस्टर मैनेजर को कंप्यूटर का गाना, एक्सेल का, एमपीआर अपडेट करने पड़ते हैं, जो भी है ज्ञान होना चाहिए,
1: यानी
0: जैसे
1: बेसिक
0: क्लस्टर
1: नॉलेज होना
0: बेसिक
1: चाहिए।
0: नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उनको रिपोर्टिंग निकालनी पड़ती है, रिपोर्टिंग देनी भी पड़ती है, और कंप्यूटर का पूरा नॉलेज उनको होना चाहिए, तभी वो क्लस्टर मैनेजर कहलाते हैं।
1: जैसे कि अभी आपने रिपोर्टिंग का नाम लिया, तो ये रिपोर्टिंग करते हैं आप, तो ये रिपोर्टिंग क्यों महत्वपूर्ण होती है?
0: ये रिपोर्टिंग जैसे हमारे स्टाफ कितना काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, तो हमें क्या दिन में 3 या 4 रिपोर्टिंग ब्लॉक से ब्लॉक इंचार्ज को देनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारे कार्य होते हैं वो रिपोर्ट तो मांगते हैं, वो रिपोर्ट आगे वो जयपुर देते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट पे देते हैं, तो हमें रिपोर्टिंग तो देनी पड़ती है सीएलएफ की। हम करेंगे तभी तो हमारे सीएलएफ का पता चलेगा ना, यहाँ क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारी सुबह पहले मॉनिटरिंग होती है, जैसे हमारी मॉनिटरिंग करते हैं बीपीएम, जैसे हमारे ब्लॉक इंचार्ज है, और मैं करती हूँ मॉनिटरिंग मेरे सीएलएफ की, जैसे मुझे उनको बताना पड़ता है कि इस मंथ हमें टारगेट मिलता है लोन का, एसएजी का और रीपेमेंट का। जैसे हमारे सीएलएफ में फंड भी बहुत होता है, जैसे हमें महिलाओं को ना वो राशि मिलती है फंड वाली, तो उसका हिसाब किताब लेखापाल रखती है, तो वो रीपेमेंट कितना सीएलएफ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, कितना सीएलएफ में आय हो रही है कितनी व्यय हो रही है, यानी आय से ज़्यादा व्यय तो नहीं हो रही है, मतलब इसका नॉलेज होना या रिपोर्टिंग हमें आगे करनी पड़ती है। और हमारे सीएलएफ में ज़्यादातर जयपुर से विजिट आती रहती है और ब्लॉक से भी विजिट आती रहती है। जैसे हमारे सीएलएफ में 2 मीटिंग होती है, जैसे एक मीटिंग तो होती है आरजीबी, जो हम लेन देन करते हैं, किस्त ब्याज जो गाँव में हमने दे रखा है पैसा, उसको हमें वीओ, वहाँ के वीओ के स्तर के पदाधिकारी आते हैं, 2 मेंबर आते हैं, वो चेक द्वारा हमारे वापस मतलब जमा करा देते, तो उसके बाद हमारे पास वहाँ से डिमांड भी आती है लोन के लिए, जैसे नया ऋण मुझे प्रस्ताव आता है तो वहाँ उस प्रस्ताव को हम रख लेते हैं। उसके बाद हमारे जैसे इसी मीटिंग होती है, तो इसी मीटिंग में कार्यकारिणी समिति, जैसे इसमें मतलब क्लस्टर मैनेजर का कोई बोलने का जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि वो कार्यकारिणी समिति ही डिसाइड करती है कि किस गांव में कितना पैसा देना है, किस गांव से कितना पैसा आ रहा है किस गांव से नहीं आ रहा है, तो वो क्या है वहां तक महिलाओं तक पैसा पहुंच जाती है रोजगार करने के लिए।
1: यानी पूरे समूह का लेखा जोखा रखने के लिए, सारी रिपोर्ट रखने के लिए आप रिपोर्टिंग का काम करते हैं।
0: हाँ जी।
1: अब ये बताइए कि क्लस्टर फेडरेशन

0: को मजबूत बनाने के लिए क्लस्टर मैनेजर के क्या-क्या प्रयास होते हैं?
1: जैसे क्लस्टर मैनेजर को क्लस्टर के मजबूत बनाने के लिए महिलाओं को मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर करना, उनको आजीविका से जोड़ना, उनको आजीविका का कोई साधन दिलाना, यानी आजीविका से जोड़ना। जैसे कोई महिला है, सबसे पहले तो अपन सबसे पहले महिलाओं को मजबूत करेंगे, तब वो SHG मजबूत होगा, SHG मजबूत होके VO मजबूत होगा, VO मजबूत होके क्लस्टर मजबूत होगा। जैसे महिलाओं को अपने को कोई ना कोई रोजगार दिलाना पड़ेगा, जैसे हम जो भी है कोई कार्य करने के लिए, कोई महिला पापड़ बड़ी का काम करती है, कोई महिला, अगर महिला मजबूत होगी तो क्लस्टर अपने आप मजबूत हो जाएगा। हाँ, उसके बाद में देखो जैसे ना ये महिला है अपना काम खोलती है, ठीक है, जैसे बकरी पालन है, पशु पालन है, उससे क्या महिला होगी, आजीविका बढ़ती है, आजीविका बढ़ती है तो वो अपना ऋण चुकाने में आसान तरीके से ऋण चुका पाती है। ऐसे जैसे कोई महिला होती है पैसा ले लेती है फिर वो घर में लगा देती है, तो उससे क्या महिला सक्षम नहीं होती है, महिला ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाती है। तो इसे सबसे पहले यही है कि जो पैसा हम दे रहे हैं उसकी निगरानी करते हैं, उसके बाद में वहाँ हम जाते हैं, वहाँ विजिट करते हैं कि एक्चुअल में ये काम हो रहा है
0: हो
1: या
0: रहा है या
1: नहीं
0: नहीं
1: रहा
0: हो
1: हो,
0: रहा है?
1: क्योंकि वहाँ पे जैसे हम जाते हैं और वो पैसा हमें जाँच करना पड़ता है कि एक्चुअल में इन्होंने काम खोला है या नहीं खोला है, ताकि उस व्यवहार पे हम, वो महिला मजबूत होगी ना तो ही क्लस्टर मजबूत होगा, ऐसे तो क्लस्टर मजबूत नहीं, ऐसा तो पैसा आएगा हम दे देंगे डूब जाएगा, उससे क्या मतलब है। जैसे राजीविका ने सबसे अच्छा काम यही किया है कि जैसे हमारे महिला निधि के भी लोन होते हैं, हर प्रकार के हमें बैंक लीकेज होते हैं, हमारे हर प्रकार के लोन होते हैं, हमें बहुत राशि मिलती है राजीविका से महिलाओं को रोजगार करने के लिए।
0: ममता जी, आप गांव में घूमती हैं, लोगों से संपर्क करती हैं, तब आपका लोगों के साथ जुड़ाव भी होता होगा, है ना?
1: हाँ
0: तो क्या आप इस काम को करने में आपको अच्छा लगता है, आपको आनंद भी आता होगा, है
1: जी,
0: ना?
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना रहता है। जैसे मैं जाती हूँ तो हर पंचायत में मेरा मिलना जुलना रहता है, मैं लोगों को मतलब आगे बढ़ते देख रही हूँ, लोगों को खुद के सक्षम होते या सामाजिक कार्यों में सुधार देख रही हूँ, और हमारे महिलाओं को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि हम आज राजीविका से जुड़कर यहाँ तक पहुँचे और हमें काम करने का मौका मिला है।
0: यानी कि लोग आत्मनिर्भर बनते हैं तो आपको उनको देख के
1: सब
0: अच्छा लगता है
1: सबसे पहले तो ये है कि
0: कि
1: जैसे हमारे ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, हमारी दीदियां हैं, सखियां हैं, वो अपने पैरों पे आत्मनिर्भर बन रही है और अपना रोजगार बहुत अच्छे से निभा रही है, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है कि मेरी बहनें आगे जाके बहुत बढ़िया प्रोग्राम करेगी या बहुत बढ़िया अपना रोजगार चलाएगी, अपने घर को सक्षम बनाएगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी और मतलब अपनी सोच को बदलेगी। जैसे पहले गांव में महिला थी वो बाहर ही नहीं निकलती थी, बेटियों को बाहर नहीं भेजते थे, कोचिंग नहीं भेजते थे, कॉलेज नहीं भेजते थे, तो जैसे गरीब परिवार रहती, गरीब परिवार उनकी वहाँ में बेटियों को बाहर नहीं जाने देते, तो मैं मिलके उनको मतलब प्रेरित करती हूँ।
0: स्वयं सहायता समूह योजना में क्लस्टर मैनेजर का रोल या भूमिका विषय पर ममता जी, आपने हमारी बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहती हूँ आज आकाशवाणी का, जो उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और सभी बहनों तक, और सभी मेरी राजीविका की बहनों तक, और जो सभी और भी महिला है, दीदी है, उन तक मेरी बात पहुँचेगी, तो उससे क्या हमारे राजीविका में जुड़ने में महिलाओं को परेशानी भी नहीं होगी उनको, क्योंकि कुछ लोग हैं जो राजीविका को जानते भी नहीं है, अब तो जान जाएंगे क्योंकि काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं राजीविका तक महिलाओं को
0: बिल्कुल।
1: लाने के लिए।
0: और अब हमारे कदम बढ़ाए चलो कार्यक्रम की एक परंपरा है कि हम धन्यवाद के रूप में हमारे जो मेहमान आते हैं उनकी पसंद का उनको एक गीत सुनवाते हैं। तो आप भी अपनी एक पसंद का एक गीत बता दीजिए, ताकि आपके साथ साथ हमारे बहनें भी आपकी पसंद के गीत को सुनकर उसका आनंद ले
1: जी
0: सकें।
1: जी मेरी पसंद का पुरानी हीरो फिल्म का कोई भी एक गीत सुना दो।
0: यानी कि आपको पुरानी फिल्म जो हीरो है उसके गीत पसंद
1: हाँ
0: है
1: जी,
0: ना?
1: हाँ
0: तो चलिए बहनों, सुनते हैं ममता जी की पसंद का ये गीत।

0: सखियो, आपने ममता जी की पसंद का गीत सुना और कदम बढ़ाए चलो कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। बहनों, हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां आपको कुछ सफल कहानियों से रूबरू करवाना है। जी बहनों, वो महिलाएं जिन्होंने स्वयं सहायता समूह योजना से जुड़कर अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव किए हैं, अपने जीवन में ही नहीं बल्कि देश के विकास में भी योगदान दिया है। तो सुनिए क्या कहती हैं ये सफल कहानियाँ।
1: मेरा नाम है दिव्या और मेरा गांव है सिंथल, बीकानेर ब्लॉक, और मैं राधेश्याम स्वयं समूह सहायता से जुड़ी हुई हूँ। और मैं हैंडीक्राफ्ट में मतलब हाथ से ये प्रोडक्ट बनाती हूँ, जैसे स्टिक के आइटम हो गए और थाली, लोटा, कलश, ये सारा आइटम बनाती हूँ। और मतलब समूह में आज मुझे 2 साल हो गए काम करते हुए, और इस समूह से मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला है। और मतलब यहाँ दुकानें भी अलॉट हो रखी है जिससे परमानेंट हमारी स्टॉल लगती है, और हर मेले में हम मतलब आगे से आगे हमें आगे मतलब दुकानें भी बाहर मिलती है जहाँ हम बाहर भी जाके मेला लगाते हैं। और मतलब सारा प्रोडक्ट समूह की महिलाएँ 10 महिलाएँ मिल के बनाती है, जिसमें किसी में कोई सिलाई करती है, कोई बुनाई करती है, कोई कढ़ाई का, कोई चप्पल जूती का, ऐसा क्रोशिए का वगैरह काम करते हैं।
2: बचाओ समूह नाम है और मारो नाम लक्ष्मी देवी है, गांव माजन है, और मैं लखपति दीदी में कर सी सकी हूँ भी मैं, और खेती बाड़ी में कोई सिखा सक भी मैं सिखाऊँ मैं, कोई बीज में बारे में, कोई और बारे में, बाड़ी बूढ़ी में, और कर सी सकी है जका पशुओं और बारे में बतावे, दवाई है, टिकड़ी है, भाई बीमार हो जाए बार बारे में बताना चाहिए। समूह में 10 है, 10 रोग।

0: है, और अर्जन सर सेंटर में बहुत लोग है, 50-60 है, ज़्यादा ही है। और वह महिला सब काम करे, वह कोई लखपति दीदी बन गई, और कोई ऐसा ही भैया पशुआर बारे में कर से सकी, खेती बारे में बतावे। समूह में भाई मीटिंग करावा, गाँव गाँव में मीटिंग करा दें, घरों घर मीटिंग करा दें, जिगिया जिगिया मीटिंग हुए बट जानो पड़े मने। समूह रो सगड़ो ही फायदो है, किरी लोन आ जाए, किरी और आ जाए, बिन ब्याज भी कम हुआ, किने भी माफ़ भी हो जाए सरकार तरफ। भाई सरकार बढ़िया काम चलाई है हमारे लिए, अच्छा काम चलाई है भाई, 2 रुपया बचत हुआ है, माने भी लाभ मिला है।
1: सुना आपने बहनों, किस प्रकार नारी शक्ति अपने पंखों को नई उड़ान देकर नए कदमों की ओर बढ़ रही हैं। और अब कार्यक्रम का अंतिम कदम यानी आपसे पूछे गए सवाल का सही जवाब बताने का समय आ गया है। हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में पूछा था एक सवाल। सवाल यह था कि क्या स्वयं सहायता समूह यानी SHG में पुरुष भी सदस्य बन सकते हैं। सखियों, आपने सही जवाब सोचा ही होगा। चलिए हम बता देते हैं इस सवाल का सही जवाब। सही जवाब है, आम तौर पर स्वयं सहायता समूह विशेष रूप से केवल महिलाओं के लिए ही बनाए जाते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि दिव्यांग व्यक्तियों या फिर बेहद पिछड़े पुरुषों के अलग समूह बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक ही समूह में महिला और पुरुष दोनों शामिल नहीं हो सकते। तो ये था आज का सवाल और उसका सही जवाब। बहनों, अब वो घड़ी आ गई है जहाँ हमें आपसे विदा लेनी होगी। मन तो नहीं करता कि आपसे बातचीत को विराम दें, लेकिन आज के अंक को विराम देंगे तभी तो अगले माह के दूसरे बुधवार को आपसे मिलने फिर से आ सकेंगे। कार्यक्रम के संयोजक थे श्री अमित सिंह, प्रस्तुति थी श्रीमती पुनीत बिश्नोई की और वाचक स्वर था मधु शर्मा का। अब आज्ञा दीजिए अगले अंक तक। नमस्कार।

0: तो बहनों, अभी आपने सुना कार्यक्रम कदम बढ़ाए चलो का एपिसोड नंबर 22, जिसमें श्रीमती ममता कंवर से भेंट कर रही थी श्रीमती मधु शर्मा और विषय था स्वयं सहायता समूह में क्लस्टर मैनेजर की भूमिका। तो अब हम भी कदम बढ़ाते हैं और सुनते हैं कुछ संदेश।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
4: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
3: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
4: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
3: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
4: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
3: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
4: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
3: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
4: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: बहनों, एक महिला जब घर की चौखट पार करके अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाती है तो वो केवल नौकरी करने नहीं निकलती, बल्कि अपने

आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई सोच की नींव रखती है। इसलिए उसका सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण में काम करना केवल उसका अधिकार नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी हो जाती है। कल्पना कीजिए, एक महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्यस्थल पर पहुंचे, लेकिन वहां उसका स्वागत उसके हुनर से नहीं बल्कि अशोभनीय टिप्पणियों, अनचाहे व्यवहार या फिर मानसिक उत्पीड़न से हो। ऐसी स्थिति केवल उसके मनोबल को ही नहीं तोड़ती बल्कि उसके सपनों और करियर को भी प्रभावित करती है। यही कारण है बहनों की महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा की रक्षा के लिए कानून ने एक मजबूत कवच प्रदान किया है, ताकि हर महिला बिना किसी डर के अपने सपनों को साकार कर सके। भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण उत्पीड़न अधिनियम 2013 महिलाओं को एक मजबूत कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत हर महिला को सम्मानजनक, सुरक्षित और भयमुक्त कार्यस्थल पर काम करने का अधिकार है। किसी भी तरीके की अशोभनीय टिप्पणी हो या अनचाह स्पर्श या फिर आपत्तिजनक संदेश, अश्लील इशारे या फिर किसी भी तरीके का यौन व्यवहार कानून की नज़र में अपराध है और इसकी शिकायत करने का आप महिलाओं को यानी कि हम सभी को पूरा अधिकार भी प्राप्त है। लेकिन महिलाओं, आज का समय केवल नौकरी तक ही सीमित नहीं है। तकनीक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने के कई नए रास्ते भी खोल दिए हैं। यदि कोई महिला पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते, छोटे बच्चों की देखभाल के चलते या फिर किसी अन्य कारण से घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, तो इसका अर्थ ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि उसके सपने रुक जाएंगे। आज फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन ट्यूशन महिलाओं के लिए सम्मानजनक, सुरक्षित और लचीले करियर का विकल्प बनकर उभरा है। आज आप घर बैठे अपनी योग्यता के अनुसार लेखन, कंटेंट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग या ट्रांसलेशन, वीडियो एडिटिंग या काउंसलिंग जैसी सेवाएं देकर अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं। यदि आपको पढ़ाने का शौक है तो ऑनलाइन ट्यूशन के माध्यम से आप पढ़ाकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है बहनों कि इन विकल्पों से हम अपने समय का बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं और परिवार और कैरियर दोनों के बीच बेहतर संतुलन भी बना सकते हैं और अपनी सुविधा और सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। आत्मनिर्भरता केवल कमाई का नाम नहीं है बल्कि बहनों अपने निर्णय स्वयं लेने का आत्मविश्वास भी है। कानून महिलाओं को सुरक्षा देता है और आधुनिक तकनीक उन्हें अवसर देती है। जब सुरक्षा और अवसर दोनों मिल जाएं, तब हर महिला अपने सपनों को नई उड़ान दे सकती है और उड़ सकती है कुछ ऐसे।

जैसे सब्जी के लिए धूप जरूरी है, वैसे ही शरीर के लिए विटामिन डी भी जरूरी है। जी हाँ बहनों, क्या कभी आपने देखा है कि यदि किसी पौधे या सब्जी को कई दिनों तक धूप न मिले तो उसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, उसकी बढ़त रुक जाती है और वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। ठीक यही बात हमारे शरीर पर भी लागू होती है। फर्क बस इतना है कि हमारे शरीर के लिए धूप का सबसे बड़ा उपहार है विटामिन D3। आजकल कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन में जकड़न, मांसपेशियों में खिंचाव और बिना वजह थकान जैसी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। हम लोग दवा तो तुरंत ले लेते हैं लेकिन असली वजह जानने का प्रयास नहीं करते। कई मामलों में इसकी एक बड़ी वजह शरीर में विटामिन D3 की कमी होती है। विटामिन D3 केवल हड्डियों को मजबूत करने का ही काम नहीं करता बल्कि ये शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में भी मदद करता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी हो जाए तो कैल्शियम का सही उपयोग नहीं हो पाता और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। हम महिलाओं में, बुजुर्गों में जो लंबे समय तक ऑफिस में बैठकर काम करते हैं उनमें विशेषकर विटामिन D3 की कमी अधिक देखने को मिलती है क्योंकि वे पर्याप्त धूप नहीं ले पाते। सुबह की हल्की धूप में 15 से 20 मिनट बिताइए, संतुलित आहार लीजिए तो ये कमी दूर भी की जा सकती है और बहुत ज़्यादा अगर समस्या हो तो आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकती हैं। बहनों, कमर दर्द सिर्फ उम्र बढ़ने का ही संकेत नहीं होता, कई बार शरीर का एक संदेश होता है कि उसे विटामिन D3 की ज़रूरत है। इसलिए दर्द को दबाइए मत, उसकी वजह को समझिए। और अब हम भी समझ रहे हैं आपके दिल की बात, तो हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए गीतों की सौगात।

बहनों, आजकल जगह जगह पर गन्ने का जूस बहुत देखने को मिलता है ना, तो आप भी पीती ही होंगी। जी हाँ, गन्ना सिर्फ स्वाद नहीं देता है बल्कि आपके शरीर को कई नेचुरल बेनिफिट्स भी देता है। कैसे, मैं बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये एक तो दांत मजबूत बनाता है। नियमित गन्ना चूसने से दांतों की मांसपेशियाँ एक्टिव होती हैं और दांत स्वाभाविक रूप से मजबूत बनते हैं। मुंह की नेचुरल एक्सरसाइज भी हो जाती है इससे। चबाने और चूसने की प्रक्रिया मुंह की मसल्स को फिट रखती है और ओरल हेल्थ को बेहतर बनाती है, और साथ ही ये एसिडिटी दूर करने का भी काम करता है। गन्ने का रस और चूसना शरीर की गर्मी को कम करता है, एसिडिटी शांत करता है और पेट को प्राकृतिक ठंडक भी देता है। यानी कि हेल्थ भी है और ग्लो भी है। प्रकृति में ही छुपा हुआ है हमारा असली ग्रो। तो आप भी गन्ने का जूस पीजिए, उसको चबाइए और यूं ही मुस्कुराइए।

तो आप भी मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए महिला जगत कार्यक्रम के जरिए। आज दीजिए आगे अपने सखी साक्षी गोस्वामी को नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई थी श्रीमती साक्षी गोस्वामी। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1300

0: And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रामानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रामानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रामानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न

में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अलनीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अलनीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को

0: पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: टेन के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइना चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज़ जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। वहां मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न। 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के ठीक 2:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संग।

ये गीत आपने सुना अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम था लज्जा। बोल थे समीर के और संगीत था अनु मलिक का।

0: ये गीत आपने सुना फिल्म साथिया से। इस गीत को गाया था ऋचा शर्मा, महालक्ष्मी, वैशाली और सोमा ने। गीत के बोल लिखे थे गुलजार साहब ने और संगीत था द वन एंड ओनली AR रहमान का।
1: डुम डुम डुमक डम डम डमक डुम डुम डुमक।

ये गीत आपने सुना फिल्म यादें से। इस गीत को गाया था कविता कृष्णमूर्ति और हेमा सरदेसाई ने, बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत था अनु मलिक का।

लता मंगेशकर और मनहर की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना फिल्म अभिमान से। गीत के बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत था एसडी बर्मन का। लीजिए फिल्म संगीत में आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की जोड़ी ने। बोल हैं फैज़ अनवर के और संगीत है नदीम श्रवण का।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू केंद्र था। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। हमारी आज की पहली सभा यहीं समाप्त होती है। सायंकालीन सभा में ठीक 4:58

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर संध्या के 5 बजने को है। आज की हमारी दूसरी सभा प्रारंभ होती है। सभा के प्रारंभ में हमारे श्रोता हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रमाणन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीनों देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा।

0: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। इस बीच श्री नायडू ने बताया कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। 450 मीटर लंबे इस अंडरपास के ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री VD सतीशन से बातचीत की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र, गुजरात और केरलम के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े हैं। इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, 5 करोड़ 24 लाख महिलाएं और 17 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ये अभियान स्वस्थ और अनुशासित युवाओं के निर्माण पर केंद्रित महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माण पहल है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म को और मानव तस्करी मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने श्रीगंगानगर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामरु चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ज और FM 101.6 मेगाहर्ज पर। संध्या के 5:05 हुए हैं और ये समय है हमारे युवा श्रोताओं के लिए उनके कार्यक्रम युववाणी का। आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों के साथ में है गीता स्वामी और रिपुदमन सिंह।

0: नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है शाम के 5:05 का, और आप सबके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए हम आ गए हैं आपके दोस्त आकाशवाणी पर, आपका शानदार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी लेकर। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह।
1: और साथियों, मेरा नाम है गीता स्वामी। बीकानेर के युवाओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नन्हे मुन्नों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। वैसे रिपुदमन, आज का मौसम जितना सुहाना है, मुझे यकीन है हमारे श्रोता भी रेडियो के पास चाय की चुस्कियों के साथ उतने ही तैयार बैठे होंगे।
0: बिल्कुल गीता, और इस बेहतरीन शाम को और भी मजेदार बनाने के लिए मुझे किस्सा याद आ रहा है, मैं सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो
1: तो फिर सुनाओ, किससे कहानियां तो सबकी फेवरेट होती है रिपुदमन।
0: देखो गीता, एक मेरा दोस्त का कजिन, मेरा एक रिश्ते में लगता हुआ एक भाई है, जो बचपन में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बहुत बड़ा शौकीन रहा था। हर वक्त कैमरे में जंगल, पहाड़, जानवरों को फोटो खींचता रहता था। लेकिन जब 12th हुई, उसके बाद पढ़ने और आगे करियर चुनने की बारी आई, तो घर में पंचायत बैठ गई। एक दूर वाले चाचा जी ने मतलब ये ज्ञान की बात बता दी कि बेटा सिविल इंजीनियरिंग कर लो, बड़े स्कोप है, पुल और मकान तो बनते।

0: रहते हैं, उसमें आगे काम कर लेना।
1: अच्छा फिर क्या हुआ, उस बेचारे ने तो कुछ कहा या फिर नहीं?
0: ये सारी बातें हुई, पर यही गड़बड़ वाली बात है कि उसने संकोचवश बड़ों के डर के कारण हामी भर दी और सोचा और चलता बढ़ा। और घर वालों के कहने पर उसने ये सब कर लिया। उन्होंने सोचा घर वालों की खुशी के लिए मैं ये काम कर लेता हूँ। पर गीता, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज वो कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़े होकर ईंट बजरी और उन ढेरों की फोटोग्राफी खींचता रहता है, एंगल बनाता रहता
1: अच्छा
0: है और
1: हाँ
0: ढूंढता रहता है कि कोई अच्छा एंगल मिल जाए और वहाँ से फोटो ले लूँ। कल ही मुझसे बात हुई थी और बोल रहा था कि मैंने एक फोटो खींची और मुझे सेंड भी की और दिखाकर बोला कि ये फोटो एक बजरी उठाते हुए एक इंसान की, और उसको नाम दिया द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, और देखकर बड़ा खुश हो रहा था।
1: अच्छा मतलब ये तो बड़ा ही हास्यास्पद है, लेकिन रिपु तुमन अगर हम गहराई से सोचे तो इस हंसी के पीछे छिपी एक बहुत बड़ी त्रासदी भी है।
0: मैं भी यही समझाना चाहता हूँ। अगर अपने उसने उस दिन हिम्मत कर ली होती और कह दिया होता कि मुझे फोटोग्राफी करनी है, मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, तो आज वो जंगल में होता, ऐसी जगहों पर होता, ऐसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा होता, ना कि वो किसी सीमेंट या किसी सीमेंट के कट्टे की फोटो खींच रहा
1: सही कह
0: होता।
1: रहे हो तुम। वैसे श्रोताओं, यही से एक बहुत गहरी बात निकल कर आती है। हमारी जिंदगी के फैसले हो या फिर मन की कोई उलझन, हमें सही समय पर अपनी बात सामने रखना आना चाहिए। जब हम संकोच में आकर चुप रह जाते हैं तो हम जिंदगी भर उस अनचाहे फैसले का बोझ ढोते रहते हैं।
0: और इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। गीता, मनोवैज्ञानिक नजरिए से बात करें तो हमारा
1: हाँ
0: दिमाग एक प्रेशर कुकर की तरह है।
1: एग्जैक्टली
0: जब हम अपनी भावनाओं को या अपने सपनों को अंदर दबा लेते हैं तो दिमाग उन अधूरे विचारों को बार बार चक्र यानी एक लूप में घुमाता रहता है, जिसे आजकल हम ओवर थिंकिंग के नाम से जानते हैं।
1: और इंसान बाहर से तो मुस्कुराता है लेकिन अंदर ही अंदर विचारों का तूफान चल रहा होता है। और यही कारण है कि आज के युवाओं में घबराहट और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंसान अपनी बात कह नहीं पाता और अंदर ही अंदर घुटने लगता है।
0: इसमें माता पिता की भी हमें भूमिकाओं की बात करनी चाहिए कि बच्चे आखिर माता पिता से बात क्यों नहीं कर पाते, क्यों उनके सामने उन्हें डर लगता है। मतलब देखा जाए तो बच्चा इस बात से डरता है कि कहीं मैं अपनी बात अपने माता पिता को बताने जाऊंगा तो कहीं मुझे वो डांट ना दे या किसी ऐसे बच्चे से तुलना ना कर दे जो काफी उससे होशियार है, या पड़ोस में कहीं रहता है वो उससे होशियार बच्चे से उसकी तुलना ना कर दे।
1: हाँ, और रिपुदमन जब माता पिता तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया दे देते हैं तो बच्चे का दिमाग अपनी सुरक्षा के लिए एक मानसिक दीवार खड़ी कर देता है। बच्चा सोचता है कि सच बोलने पर सजा मिलेगी, इसलिए वह अपनी भावनाएं छिपाने लगता है। मेरी सभी माता पिताओं से गुजारिश है कि घर में ऐसा माहौल बनाए जहाँ बच्चा बिना डरे अपनी बात कह सके, अपनी बात सुने, उसकी बात सुने और जज न करे और उसका हौसला बढ़ाए रखे।
0: बिल्कुल, तुमने एकदम सही कहा। और एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है गीता, जिसे हम भूल रहे हैं, सोशल मीडिया। इसकी
1: वो
0: वजह से
1: तो
0: लोग असल जिंदगी में बात करना बंद कर देते हैं, बहुत कम बातचीत करने लगे हैं।
1: सही कह रहे हो तुम। इंटरनेट पर लोगों के 5-5 हज़ार दोस्त हैं, सोशल मीडिया पर उनके हर वीडियो पर हजारों लाइक्स आते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब वे उदास होते हैं तो फोन लिस्ट में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलता जिससे वे दिल खोल कर कह सके कि मैं आज बहुत परेशान हूँ, मेरी बात सुन लो। और हम आभासी दुनिया में खो गए हैं और असल रिश्तों से कटते जा रहे हैं इस तरह।
0: इसलिए तो श्रोताओं, आज से ही एक नई शुरुआत कीजिए। अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपने सपने, अपने रिश्तेदारों, अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए।
1: और सबसे जरूरी बात कि अपनी बात मजबूती से रखिए, बिना किसी पर गुस्सा किए मन के दरवाजे खोलिए, थोड़ी ताजी हवा को अंदर आने दीजिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है साथियों, इसे घुट घुट कर नहीं बल्कि खुल कर जिए।
0: और खुलकर जीने के लिए ज़रूरी है थोड़ी सी मिठास, थोड़ा सा संगीत। तो श्रोताओं, हमारी बातें तो अभी और भी बाकी है, सफ़र लंबा है।
1: जी हाँ, और आप कहीं जाइएगा नहीं साथियों, आपके चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट डालने के लिए हम आपको सुना रहे हैं एक बेहद खुशनुमा और सुरीला गीत।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: तो दोस्तों अब वक्त हो चला है आपके पसंदीदा सेगमेंट यानी क्विज सेगमेंट का। इसके अंदर हम आपको आपसे दो प्रश्न पूछेंगे जिनका जवाब हम आपको प्रोग्राम के अंत में देंगे, तो प्रोग्राम के अंत तक बने रहिएगा। तो आपका पहला प्रश्न है
2: कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में कहां बनाया जा रहा है,
1: और दूसरा प्रश्न है सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो ये प्रश्न इनके जवाब हम आपको अंत में देंगे, पर उससे पहले कैलाश खेर की मशहूर आवाज में जिनके नाम से सरहदें महफूज रहती है और दुश्मन खौफजदा हो जाते हैं, उनके शौर्य को अल्फाज नहीं जज्बात चाहिए, देश उन असली नायकों को नमन करता है। पद्मश्री कैलाश खेर की बुलंद आवाज में हम सुनते हैं और उनकी कुछ बातें हम सुनते हैं हिंदुस्तान की सेना को समर्पित भारतीय सेना।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की

सुरक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल,

0: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक।

आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: गीता एक बात बताऊं कि स्टूडियो के अंदर ही थोड़ी सांस आ रही है, नहीं तो स्टूडियो से बाहर निकलते ही तो बहुत बुरे हाल हैं। जुलाई की ये चिप चिप करने वाली उमस भरी गर्मी, पूछो ही मत। आसमान में बादल तो इतने उमड़ घुमड़ कर रहे हैं पर बारिश का नाम नहीं है।
1: सही कह रहे हो तुम, कूलर और पंखे सब फेल हो चुके हैं। बस ऐसा लग रहा है कि कहीं से ठंडी ठंडी हवा का झोंका आ जाए और झमाझम बारिश शुरू हो जाए।
0: बिल्कुल।
1: वैसे बारिश से याद आया रिपुदमन, कल शाम मैं अपने एक कॉलेज के दोस्त से फोन पर बात कर रही थी और सच बताऊं उसकी बातें सुनकर मुझे उससे भयंकर जलन हो रही थी।
0: अरे बाप रे, उसने कोई नई गाड़ी ले ली या कोई जॉब लगी उसकी बड़ी कंपनी में?
1: अरे गाड़ी वाड़ी नहीं, वो महाशय आजकल ऐसी जगह छुट्टियां मना रहे हैं जहां पिछले 4 दिनों से उन्होंने सूरज की शक्ल तक नहीं देखी।
0: अच्छा,
1: बता रहा था कि हर तरफ बस घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। उसे तो जुलाई के इस महीने में भी वहां स्वेटर निकालनी पड़ रही
0: क्या
1: है।
0: बात कर रही हो, इस मौसम में स्वेटर? पक्का वो भारत के किसी हिल स्टेशन पर, शिमला या मनाली या कश्मीर गया होगा।
1: यही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है रिपुदमन, वो उत्तर भारत के पहाड़ों पर नहीं बल्कि वो तो हमारे देश के उस हिस्से में है जो नक्शे के बिल्कुल बाईं तरफ है, समंदर के किनारे किनारे एक विशाल हरी दीवार की तरह खड़ा है जो कि गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर सीधे नीचे केरल तक जाता है।
0: अरे वाह, मैं समझ गया हूँ, तुम उन पहाड़ों की बात कर रही हो जो अरब सागर के बिल्कुल समानांतर चलते हैं। वो तो यार सच में वो जादुई दुनिया है। तुम्हें पता है कि वो पहाड़ हिमालय से भी पुराने हैं?
1: सच में हिमालय से भी पुराने, ये तो मुझे नहीं पता था वैसे।
0: बिल्कुल, जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था तब से पहाड़ वहां सीना ताने खड़े हैं। और तुम्हें एक और बात पता है कि वहां इतनी भयंकर बारिश क्यों होती है?
1: हाँ वैसे ना, जब समंदर की तरफ से भारी भरकम बादल उड़ते हुए आते हैं तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ एक दीवार की तरह उनका रास्ता रोक लेते हैं। बादलों को हार मानकर फिर वहां अपना सारा पानी बरसाना पड़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, और उसी लगातार होने वाली बारिश का नतीजा है कि वहां इतने घने जंगल हैं, इतने घने कि दिन में 12 बजे भी कई जगह ऐसी है जहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है गीता। और गीता, वहां तुम्हें ऐसे ऐसे जीव जंतु देखने को मिलेंगे जो पूरी दुनिया में तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेंगे।
1: हाँ मैंने भी सुना है कि वहाँ एक ऐसा बंदर देखा जिसकी ना पूंछ बिल्कुल शेर जैसी है, और तो और वहाँ मेंढकों की ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं जो बिल्कुल पारदर्शी है, मतलब बाहर से ही उनके अंदर के अंग देखे जा सकते हैं।
0: इसे ही तो कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। वहां जीवन की इतनी सारी विविधता है कि उस यूनेस्को ने भी उसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर रखा है। लेकिन गीता, इन पहाड़ों का एक और बहुत बड़ा योगदान है
1: वो क्या?
0: जिससे पूरी दक्षिण भारत उसके बिना कल्पना

0: नहीं कर सकता।
1: हाँ, क्या है वो मुझे
0: नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दक्षिण भारत की अब सब प्यास बुझाती है। वहाँ के खेतों में सोना उगाने का काम करती है ये नदियाँ इन्हीं पहाड़ों से निकल कर आती है, इन्हीं जंगलों से इनका जन्म होता है। अगर ये पहाड़ ना हो तो पूरा दक्षिण भारत कह सकते हैं कि प्यासा रह जाएगा। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये वहाँ के करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है।
1: यानी कि ये सिर्फ एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि हमारे देश के पर्यावरण का दिल है। लेकिन जीपू दमन, उसने एक बात बड़ी उदासी के साथ बताई थी
0: हाँ, क्या?
1: कि विकास के नाम पर लोग अब इन पुराने जंगलों को

0: टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि हमारे देश के पर्यावरण का दिल है। लेकिन रिपू दमन उसने एक बात बड़ी उदासी के साथ बताई थी कि विकास के नाम पर लोग अब इन पुराने जंगलों को बेरहमी से काट रहे हैं, पहाड़ों को चीर कर खदाने खोद रहे हैं।
1: यही तो सबसे बड़ी गलत बात है, गलती है हमारी की गीता हम उसी डाल को काटने में लगे हुए हैं जिस पर हम खुद बैठे हैं। अगर पहाड़ नहीं होंगे, जंगल उजड़ जाएंगे तो हमारा पूरा मानसून का चक्र ही बिगड़ जाएगा। ना वहाँ शेर दिखेंगे, शेर की पूंछ वाले बंदर दिखेंगे, ना वो नदियाँ रहेगी।
0: एग्जैक्टली, और इसीलिए हमें समझना होगा कि प्रकृति का संतुलन ही हमारा भविष्य है। अगर वो हरियाली बची रहेगी तभी हमारी सांसें चलती रहेगी। खैर रिपुदमन, इन बातों ने तो सच में मुझे उस ठंडी हवा और हरियाली का एहसास करा दिया है। बीकानेर की इस उमस में भी एक ताजगी सी आ गई है, नहीं?
1: यही तो बात है, बातों का जादू है गीता। तो श्रोता हूँ, जब तक बीकानेर में भी काले बादल रिमझिम बरसने लगे तब तक क्यों ना हम उस ठंडी हवा और इस झरनों का मजा रेडियो के जरिए लेते हैं।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं आप कहीं जाएगा नहीं, बस अपनी आंखें बंद कीजिए, महसूस कीजिए कि आप किसी हरे भरे पहाड़ पर है, सामने समंदर है और आपके कानों में घुल रही है यह बेहद प्यारी और सुकून देने वाली धुन। हम लौटते हैं बस कुछ ही पलों में।

0: वैसे रिपुदमन, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने पूरे कॉन्फिडेंस से कोई ऐसी बात कह दी हो जो सुनने में तो बिल्कुल सच लगे, लेकिन बाद में पता चले कि वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह थी?
1: अरे हाँ बिल्कुल, ऐसा तो रोज ही होता है। सुबह सोशल मीडिया खोलते ही कोई ना कोई कह देता है कि ये खा लो सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। दूसरा कहता है कि ये मैसेज 10 लोगों को भेज दो तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। अब बताओ क्या ही करें, अब फोन देखें या फैक्ट चेक करें?
0: वही तो। और मजे की बात तो ये है कि बिना सोचे समझे लोग उसे आगे फॉरवर्ड भी कर देते हैं।
1: यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। हम जानकारी तो बहुत तेजी से बांट देते हैं, लेकिन एक मिनट भी रुक कर ये नहीं सोचते कि क्या ये सही मैसेज है या नहीं।
0: और शायद यहीं से शुरू होता है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
1: बिल्कुल, तुमने एकदम सही कहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब सिर्फ साइंस पढ़ने वाला ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि लैब टेस्ट करना या एक्सपेरिमेंट करना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है।
0: इसका मतलब तो ये है कि हर बात को तर्क के साथ, प्रमाण और समझ के आधार पर परखें, यानी किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास न करें, बल्कि क्यों, कैसे और क्या सच में ये ऐसा होता है जैसे सवाल पूछें।
1: इसी पर मुझे एक बात याद आती है। बचपन में तुमने भी सुना होगा ना कि एक बात तुमने भी सुनी होगी,
0: कौन सी कौन?
1: अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो थोड़ी देर रुकना चाहिए।
0: सुनिए। और अगर परीक्षा वाले दिन दही चीनी नहीं खाई तो पेपर अच्छा नहीं होगा, ये भी सुना है मैंने तो।
1: देखो कुछ मान्यताएं अपनी जगह है, पर कुछ ऐसी बातें भी है जिन्हें वैज्ञानिक आधार पर हमें जांचना चाहिए।
0: यही तो वैज्ञानिक सोच है, किसी बात को सिर्फ इसलिए सच नहीं मान लेना कि लोग वर्षों से कहते आ रहे हैं। अगर कोई तथ्य है, प्रमाण है, तो जरूर मानिए, लेकिन अगर सिर्फ अफवाह है तो उस पर सवाल पूछना भी जरूरी है।
1: दोस्तों विज्ञान हमें सिर्फ मशीन बनाना नहीं सिखाती, विज्ञान हमें सोचना भी सिखाती है।
0: और जब बच्चा पूछता है कि आसमान नीला क्यों है या फिर बारिश कैसे होती है, तब वहीं से वैज्ञानिक सोच की शुरुआत होती है।
1: और सबसे अच्छी बात है कि विज्ञान कभी यह नहीं कहता कि मेरी बात मान लो, बल्कि ये कहता है कि जांच लो, परख लो और फिर विश्वास करो, आपकी मर्जी है।
0: यही तो उसकी खूबसूरती है।
1: आज के दौर में, डिजिटल एरा में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पहले ज्यादा जरूरी है जिम्मेदार बनना, है ना? क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, लेकिन कौन सी इन्फॉर्मेशन को हमें चुनना है ये हमारे लिए ज़रूरी है।
0: इसीलिए जब भी कोई नई जानकारी मिले, चाहे सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर या फिर किसी से सुनने को मिले, उसे बिना सोचे आगे बढ़ाने के बजाय पहले उसकी सच्चाई जरूर जानिए।
1: और अगर हम सबने सिर्फ यही आदत अपना ली तो फेक न्यूज़ कम हो जाएगी, अफवाह भी कम होगी और समाज भी ज़्यादा जागरूक बनेगा।
0: हाँ रिपुदमन, और मुझे तो लगता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सबसे बड़ा फायदा भी यही है कि यह हमें डर से नहीं बल्कि समझ से जीना सिखाता है।
1: क्यों नहीं, हम जब किसी चीज का कारण पता कर लेते हैं, उससे जुड़ी हुई अनावश्यक बातों को हम जान लेते हैं, उन्हें हटा देते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि पहले लोग बिजली कड़कने पर कई तरह की मान्यताओं को जोड़कर बताते थे, अब विज्ञान ने बताया कि ये एक प्राकृतिक घटना है।
0: हाँ, और यही वजह है कि विज्ञान और तर्क हमारे अच्छे मित्र बने हैं।

0: हमारे अच्छे साथी बने हैं, वे हमें अंधविश्वास से दूर ले जाकर वास्तविकता से करीब लाते हैं।
1: वैसे एक बात और बताना चाहूंगा गीता, अगर मोबाइल अचानक बंद हो जाए तो तुम क्या करोगी?
0: सबसे पहले चार्जर ढूंढूंगी, फिर रिस्टार्ट करूंगी, और फिर अगर फिर भी ये ना चले तो किसी जानकार से पूछूंगी।
1: देखो ये हुआ ना एक तरीका, इसे कहते हैं वैज्ञानिक तरीके से सोचना। अब यू तो हम कह नहीं सकते ना कि हमारा मोबाइल हमसे नाराज हो गया इसलिए मोबाइल ऑन नहीं हो रहा।
0: सही पकड़े हो, मतलब हम रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते ही है।
1: जब किसान मौसम की जानकारी लेकर फसलों की योजना बनाता है, फसल बोने की योजना बताता है, और जब डॉक्टर जांच के आधार पर इलाज करता है, जब छात्र किसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए किताबों के स्रोत देखता है, तब हर जगह एक वैज्ञानिक सोच काम कर रही होती है।
0: जी हाँ, और दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब अपनी परंपराओं का विरोध करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सही और गलत में अंतर करना और हर बात को समझदारी से देखना।
1: बहुत सही कहा तुमने, हमारी संस्कृति ज्ञान और जिज्ञासा की संस्कृति, सवाल पूछना, सीखना और नए विचारों को अपनाना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है।
0: और अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि महान वैज्ञानिकों ने भी सवाल पूछने से ही शुरुआत की थी। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल जो कि छोटा सा सवाल है पर कई बड़ी खोजों की वजह बना है।
1: चाहे आप देख लो सीवी रमन जी को देख लो जिन्होंने प्रकाश का एक महत्वपूर्ण खोज की, और चाहे एपीजे अब्दुल कलाम जी को देख लो जिन्होंने सपनों को विज्ञान से जोड़ा, इन सब की यात्रा जिज्ञासा से ही शुरू हुई थी।
0: तो साथियों आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी शुरुआत करें, हर नई बात पर विश्वास करने से पहले उसे समझने की कोशिश करें, हर जानकारी को आगे बढ़ने से पहले उसकी सच्चाई जान लें, और हर समस्या को डर के बजाय समझदारी से देखें।
1: क्योंकि सवाल पूछना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि सीखने की पहली सीढ़ी है, और जिज्ञासा ही ज्ञान का पहला कदम है।
0: इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए, तर्क और विवेक को अपना साथी बनाइए, और सीखने की इस यात्रा को कभी मत रोकिए।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो क्या कहना चाहते हैं आप गीता जी?
5: मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि आज से तुम अपनी राय किसी के सामने नहीं रख सकते, ना बोल सकते हो ना लिख सकते हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा?
4: अरे बाप रे, ये क्या बातें कर रही हो तुम? फिर तो मेरे आधे मन की बात मन में ही रह जाएगी। और सच कहूँ तो अपनी बात कहने की आजादी ना हो तो मैं खुद ही अधूरा महसूस करने लगूंगा।
5: क्योंकि अपने विचार व्यक्त करना हर इंसान की स्वाभाविक जरूरत है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हमारे संविधान में इसके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है?
4: अच्छा, बिल्कुल किया गया है, मुझे भी मालूम है इस चीज के बारे में। हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 के अंदर भारतीय नागरिकों को एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो स्वतंत्रता हमारे संविधान को, हमारे लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाती है।
5: हाँ, और जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो अक्सर अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ याद आते हैं। अनुच्छेद 19 भी हमें कुछ ऐसे ही अधिकार देता है जिनका जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना बहुत ही जरूरी है।
4: बिल्कुल, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों के विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, इस तरह की कई स्वतंत्रताएं इसके अंदर शामिल है।
5: सुनने में ये लगता है कि ये अधिकार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कितने जुड़े हुए हैं। चाहे अपनी बात कहना हो, पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना हो या फिर अपने मन का करियर चुनना हो, हर जगह अनुच्छेद 19 हमारे साथ खड़ा दिखाई देता है।
4: लेकिन गीता, एक बात और समझनी जरूरी है, क्या इस स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हम कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं?
5: नहीं, ऐसा तो नहीं है। हर अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, इसलिए अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं पर उचित और कानूनी प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं ताकि देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और दूसरे लोगों के अधिकार सुरक्षित रह सके।
4: यानी आजादी का मतलब सही मायने में यह है कि इसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी आप मानकर चलिए, क्योंकि अधिकार तभी काम करता है जब आदमी जिम्मेदार होगा।
5: और मान लीजिए सोशल मीडिया पर कोई गलत या फिर भड़काऊ जानकारी फैला दे, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है बल्कि उसका दुरुपयोग होगा।
4: बिल्कुल, तुमने सही कहा। अगर हमें बात रखनी है तो तर्क के साथ, शालीनता के साथ, जिम्मेदारी के साथ रखेंगे, ना कि उस आजादी का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रखेंगे। इस चीज को सकारात्मक लेना बहुत जरूरी है।
5: और मुझे तो लगता है कि यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन दूसरों की बात सुनने का

0: संस्कार भी उतना ही जरूरी है।
1: क्योंकि संवाद ही तो सफल, मतलब संवाद ही सफल है। अगर हम किसी की बात सुनेंगे नहीं तो हम आगे कह क्या पाएंगे।
0: तो दोस्तों अपने अधिकारों को जानिए, उनका सम्मान कीजिए और उनका उपयोग हमेशा जिम्मेदारी के साथ कीजिए।
1: इसी संवाद में जुड़ा है, एक हमारे अधिकार में जुड़ा है संगीत, उसे सुनते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: एक बात तो है रिपुदमन, आजकल मोबाइल हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गया है। चाहे पास में पैसा हो या ना हो, पर मोबाइल है तो कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ती।
1: क्योंकि आजकल हमारा मोबाइल सिर्फ बात करने का साधन नहीं बल्कि हमारी एक डिजिटल तिजोरी बन चुका है।
0: और कभी वो समय था जब पैसे भेजने के लिए बैंक की लाइन में खड़ा होना पड़ता था, फॉर्म भरने पड़ते थे और कई बार छुट्टे पैसों की लिए परेशान भी होना पड़ता था। लेकिन आज एक छोटा सा स्कैनर और भुगतान पूरा।
1: और इस आसान सफर का नाम है यूपीआई। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल के युवा इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं, लेन देन में और हर जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। आज सब्जी वाले को से लेकर बड़े बड़े व्यापारियों तक में यूपीआई गूंज रहा है।
0: एक छोटा सा QR कोड कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। यही तो डिजिटल भारत की खूबसूरती है, जहाँ तकनीक ने आम इंसान के जीवन को आसान बना दिया है।
1: सही कहा गीता तुमने। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसने विकास किया है, जिसने काफ़ी सारी ऐसी हमारे लिए सफलताएं हासिल कर दी है, जिसे हम आसानी से कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, हमारे बैंक खाते से तुरंत किसी को भी पैसा भेज सकते हैं।
0: हाँ, और इसकी सबसे बड़ी तो खासियत यही है कि इसकी सरलता, न लंबी प्रक्रिया न ज़्यादा जानकारी याद रखने की ज़रूरत होती है। बस UPI ID, मोबाइल नंबर या फिर QR कोड के ज़रिए कुछ ही सेकंड्स में भुगतान हो जाता है।
1: और यही वजह है कि यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को हर वर्ग तक पहुंचाया है। छोटे दुकानदार को भी इससे फायदा मिलता है क्योंकि अब वो बिना किसी बड़ी व्यवस्था के डिजिटल भुगतान स्वीकार कर सकता है।
0: लेकिन दोस्तों, डिजिटल सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अपना UPI पिन, OTP और बैंक से जुड़ी निजी जानकारी किसी के साथ साझा

0: ना करें।
1: बिल्कुल तुमने सही कहा। पर दोस्तों अब सफर में आगे बढ़ेंगे, अभी हम आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछेंगे, पर उससे पहले देखते हैं एक सूचना।
2: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: तो दोस्तों अब वक्त हो चला है क्विज सेगमेंट के आंसर देने का। तो हमारा पहला प्रश्न था
0: कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में कहां बनाया जा रहा है, तो इसका सही जवाब है चौंप जयपुर में।
1: और दूसरा प्रश्न है कि सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भारत में राजस्थान कौन से नंबर पर आता है। सबको पता है बेशक प्रथम नंबर पर आता है। तो अब चलते हैं हमारे रोज के रोजगार सेगमेंट की तरफ। तो इसमें लेकर आए हैं हम रेलवे की तरफ से भर्ती। आरआरबी ने एक विज्ञप्ति जारी की है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए,
0: जिसमें कुल पद है 6,557 और इसके आवेदन की जो शुरू हुए हैं वो 30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026 तक आवेदन भरे जाएंगे।
1: और इसके अंदर आयु सीमा रहेगी 18 वर्ष से 33 वर्ष और अन्य वर्गों के लिए इसमें संशोधन किया गया है। इसके अंदर आप शुल्क रहेगा 500 अधिकतम और 250 निम्नतम वर्ग के हिसाब से। और आप इसकी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट rrb.apply.gov.in पर जाकर पता कर सकते हैं और भरने से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की रोजगार सूचना। तो देखिए अब सफ़र बहुत लंबा था, बातचीत भी काफ़ी की, पर कहते हैं ना कि कितनी भी बात कर लो सफ़र का अंत तो निश्चित है। उसी प्रकार हमारा सफ़र का भी अंत अब आ ही गया है, हमें भी आपसे विदा लेना पड़ेगा क्योंकि इन बातों और इन किस्सों और इन संगीत के बीच में ये आपसे जो बिछड़न का समय है ना, ये बड़ा ही दुखद होता है। तो इसके लिए अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप भी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल शाम को 5:05 पर, याद रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही थी गीता स्वामी और रिपुदमन सिंह। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज, और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। संध्या के 5:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

संध्या 7 बजे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, और आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे अश्वनी व्यास और डॉक्टर नमामि शंकराचार्य। आज ग्रामीण जगत में चर्चा होगी बुवाई से पूर्व बीज उपचार का महत्व, विलायती बबूल से पर्यावरण को नुकसान, बालिका व महिला उत्थान के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ आज आप जान पाएंगे राज किसान साथी पोर्टल, और साथ ही साथ में मनोरंजन के लिए होगा लोकगीतों का समन्वय। ये कार्यक्रम प्रस्तुत होगा संध्या 7 बजे

रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा चर्चा का विषय है कार्यक्रम। याद रखिएगा, रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम का प्रसारण होगा चर्चा का विषय है हमारे दिल्ली केंद्र से। सुगम संगीत का रसास्वादन आप कर पाएंगे संध्या 7:45 पर।

रात्रि 8:30 पर सुनिएगा लोक संगीत। रात्रि 10:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत। मणिलाल नाग सितार पर राग बागेश्वरी, इनके साथ तबले पर संगत करेंगे हिदायत खां। ये शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर हमारे बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

6:30 पर सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार, पश्चात जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात आप सुन पाएंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

0: 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ये थी आज के हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ज पर संध्या के 6 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रोबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, इससे वर्षा की

0: वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:05 हुए हैं और ये समय है आप लोगों के लिए फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में आज आप सुनेंगे युगल गीत, और युगल गीत में हम पहले लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए यशुदास और हिमलता का गाया ये गीत फिल्म चित्तचोर से।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म यस बॉस से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए, फिल्म संगीत में अगली पेशकश है आप लोगों के लिए लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में। ये गीत होगा फिल्म वीर जारा से।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत में युगल गीत। लीजिए आप लोगों के लिए अगला नगमा है यशुदास और लता मंगेशकर की आवाज़ में। ये गीत है फिल्म बावली से।

0: यशुदास और लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ ही फिल्म संगीत का ये नगमा यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:30 होने को है। अब आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, पश्चात जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात सुनिएगा राजस्थान में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए दिल्ली से कोटा तक सड़क मार्ग से दौरा। राज्य सरकार का इस साल वर्षा ऋतु में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। पौधा वितरण और रोपण का कार्य मिशन मोड पर। अलनीनो की चुनौती पर केंद्र सरकार अलर्ट। बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2,25,000 क्विंटल का राज्य बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में संज्ञान लिया। 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क की गुणवत्ता, एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं की जमीनी स्थिति जानी। केंद्रीय मंत्री के साथ दिल्ली से NHAI और मंत्रालय के आला अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी रहा। उन्होंने एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर चर्चा की। इस दौरान दुर्घटना संभावित क्षेत्र यानी ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और सुरक्षा मानकों को और कड़ा करने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरे में अलवर जिले के पिनान में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने श्री गडकरी से मुलाकात की। अलवर और दौसा के बाद केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी कोटा के लिए रवाना हुए। वे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के पास बन रही दरा टनल का भी जायजा लेंगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ रहेंगे। अब से कुछ ही देर पहले तीनों नेताओं ने बूंदी के लबान में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा जिले के खातोली में विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने करीब 71 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें सड़क निर्माण, संपर्क मार्गों के विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पेयजल सुविधाओं से जुड़े काम शामिल है। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली नई सड़कों और पुलियाओं की मरम्मत तथा संपर्क मार्गों से क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। इससे आम लोगों का जीवन अधिक सुगम और सुविधाजनक होगा।
2: इस खातोली के जो सारा इलाका है, न रोड की समस्या रहेगी, न पीने के पानी की समस्या रहेगी, न बिजली की समस्या रहेगी।

0: यहाँ की रोड सबसे हालत खराब हुआ करती थी, जो खराब है बरसात के बाद उसको युद्ध स्तर पर काम चलाकर उसकी रोड कनेक्टिविटी, पुलिया, पीने का पानी, बिजली, ये सारी सुविधाओं का जो बरसों से अभाव था वो अभाव भी पूरा करेंगे।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई, साथ ही पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और कुसुम योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आज डीग बाईपास निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। करीब 9.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बाईपास के निर्माण से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था अधिक सुगम और व्यवस्थित होगी। इस मौके पर श्री बेढम ने कहा कि बाईपास के बनने से तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।
2: यहाँ वर्षों पुरानी मांग थी कि नगर में जाम की समस्या से निजात मिले और बाईपास का निर्माण हो। 61 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये बाईपास, जिसका मिट्टी का काम पूरा हो गया है, इसका हमने शिलान्यास किया है। इसके अलावा करीब 2000 करोड़ के काम हमारी विधानसभा में चल रहे हैं, प्रगतिरत हैं, और भविष्य में भी जो जो आवश्यकताएँ हैं, हम जनता की अपेक्षा पर खड़े उतर के उनके विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करेंगे।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल और वित्त मंत्री ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्य सरकार ने इस साल वर्षा ऋतु में 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए पौधों की वितरण और रोपण का कार्य मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में सचिवों की समिति की बैठक ली। इस दौरान विभिन्न योजनाओं, हरियालो राजस्थान अभियान और शहरी तथा ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बालोतरा, बाड़मेर, झालावाड़, जयपुर और कोटा पौधरोपण अभियान में अग्रणी है। मुख्य सचिव ने बताया कि शहरी सेवा शिविरों में अब तक 28,000 से ज्यादा पट्टे दिए जा चुके हैं, वहीं ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए 38 लाख से अधिक नागरिकों को फायदा पहुंचाया गया है। मुख्य सचिव ने ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तैयारी और स्पष्ट रणनीति के साथ अलनीनो चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्रिय और सतर्क है। उन्होंने कहा कि जून महीने में कम बारिश के बाद अब जुलाई में स्थिति में सुधार आया है। इससे देश में कम बरसात वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निगरानी तंत्र पूरी तरह सक्रिय है। मानसून में देरी का सोयाबीन और कपास पर असर पड़ा है। किसानों को मक्का, बाजरा, मूंग और कम अवधि तथा कम पानी वाली फसलों की बुआई की सलाह दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि जून महीने में चलाए गए खेत बचाओ अभियान के तहत 1,24,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे 80 लाख से ज्यादा किसानों तक सीधे पहुंच बनाई गई। उन्होंने बताया कि बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,75,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार तैयार किया गया है, जिससे किसी भी स्थिति में बुआई प्रभावित ना हो।
3: हमने 2-3 तैयारियां और की। एक तो बीज की कोई कमी ना रहे, और इसलिए हमने लगभग 2.25 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज का एक रिजर्व भंडार रखा है कि कहीं अगर एक बोनी खराब हो गई, बीच में कहीं गैप ज्यादा हो गया बरसात में, तो बीज की कमी हमारे पास ना रहे, उसकी व्यवस्था भी की है। ऐसे समय किसान को पैसे की भी जरूरत होती है, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड जिन किसानों के पास नहीं थे वो बनाने का भी अभियान चलाया है। 30 जून

0: तक जो 1,14,613 आवेदन प्राप्त हुए थे उनमें से 94,417 स्वीकृत करके उनके किसान क्रेडिट कार्ड बना दिए गए हैं। फसल बीमा योजना में भी किसान ज्यादा सम्मिलित हो उसके लिए भी हम अभियान चला रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे के बाद आज ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी का ये दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को नई दिशा देगा। श्री मोदी मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और स्वच्छ ऊर्जा सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती देना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं। भारत इंडोनेशिया साझेदारी मजबूत हुई है, साथ ही भविष्य का महत्वाकांक्षी एजेंडा तय किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और मानव तस्करी मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने श्रीगंगानगर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने विशेष जांच दल एसआईटी जांच का भी संज्ञान लिया है, जिसमें अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से पीड़िता से संबंधित वीडियो और सामग्री को तत्काल हटाने को कहा है। देश भर में अब तक 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, करीब 5.25 करोड़ महिलाएं और 17 लाख से अधिक शिक्षण संस्थान शामिल हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस अभियान के तहत नारकोटिक्स ब्यूरो, राज्य और जिला प्रशासन, पुलिस, गैर सरकारी संगठन और अस्पताल मिलकर देश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को जोड़ना और सभी संबंधित पक्षों की गतिविधियों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट करना है, ताकि भारत को नशे की लत से मुक्त बनाया जा सके। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सलुम्बर जिले के जयसमंद क्षेत्र के देवपुरा में आज ग्रामीण सेवा शिविर लगाया गया। पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीनों से ग्रामीणों की जांच की गई। इस दौरान 10 लोगों में टीबी के लक्षण मिलने पर उन्हें उपचार के लिए चिन्हित किया गया है। मौसम विभाग ने आज जैसलमेर और बाड़मेर को छोड़कर प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट बताया है। बारा, झालावाड़ और कोटा में तेज बरसात का ऑरेंज, वहीं बाकी 33 जिलों में येलो अलर्ट है। कल सवाईमाधोपुर, कोटा और बारा में झमाझम बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, वहीं 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश की गतिविधियों में 10 जुलाई के बाद कमी आने की संभावना है। इस बीच आज अलवर, कोटा और बारा में बरसात हुई। भीलवाड़ा में भी दोपहर बाद गरज के साथ कुछ देर तेज बारिश हुई। धौलपुर में सुबह से ही रिमझिम बरसात का सिलसिला बना हुआ है। उधर जैसलमेर में भीषण गर्मी और उमस का दौर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए दिल्ली से कोटा तक सड़क मार्ग से दौरा। राज्य सरकार का इस साल वर्षा ऋतु में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। पौधा वितरण और रोपण का कार्य मिशन मोड पर। अलनीनो की चुनौती पर केंद्र सरकार का अलर्ट। केंद्र सरकार अलर्ट, बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2.25 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में संज्ञान लिया, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से झालावाड़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर समाचार एकांश की ओर से तैयार किया गया है। अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए मशहूर झालावाड़ जिला संतरे की खेती के लिए अपनी खास पहचान रखता है। खूबसूरत स्थापत्य कला से बने किले और महल यहाँ की अपूर्व सांस्कृतिक विरासत है। प्रदेश के दक्षिण पूर्व में बसा ये जिला इन दिनों मानसूनी रंगत में रंगा हुआ नजर आ रहा है। बरसात

0: कई इलाके तरबतर हैं, खेतों में नई फसल की तैयारी शुरू हो गई है और किसानों के चेहरों पर अच्छी उपज की एक उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ आज झालावाड़ जिले की चिट्ठी शुरू करते हैं। जिले में इन दिनों जन कल्याणकारी योजनाओं, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े कई कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रशासन विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। जिले में इन दिनों ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों में 22 विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। राजस्व संबंधी प्रकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेयजल, बिजली, कृषि और अन्य विभागों के काम मौके पर किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने अधिकारियों को समय पर प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भवानी मंडी और झालरापाटन में जनसुनवाई और अटल जन सेवा शिविर भी आयोजित किए गए। इन शिविरों में लोगों ने राजस्व, पेयजल, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, किसान सम्मान निधि और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं रखी। अधिकारियों को सभी प्रकरणों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से 3 दिन की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं हाल ही में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई और अभियान को सफल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी जिले भर में सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में लोगों ने योगाभ्यास किया। आयुष विभाग ने नियमित योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अभियान के दौरान जल स्रोतों की साफ सफाई की गई, पौधरोपण के कार्यक्रम हुए, श्रमदान जन जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया गया और अभियान से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों ने पौधे लगाए तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया। खेल संकुल में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। इससे पहले झालरापाटन स्थित गोमती सागर और द्वारकाधीश मंदिर में प्रदेश में अच्छी वर्षा, कृषि समृद्धि और जन कल्याण की कामना के साथ विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई। इसमें जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने भाग लिया। उधर मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों को जल भराव वाले क्षेत्रों की निगरानी, साफ सफाई और आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, कैंसर और सिकल सेल जांच, टीबी जांच तथा आयुष्मान भारत योजना से जुड़े कामों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रम भी लगातार जिले में आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही कृषि विभाग किसानों को समय पर तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा रहा है। जिले में पेयजल, बिजली और सड़क संबंधी कामों की भी नियमित समीक्षा की जा रही है। संबंधित विभागों को आवश्यक सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने और शिकायतों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ झालावाड़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे री गुणवत्ता और बनाई चुनाई रा कामारो जायजो ले वनसारू दिल्ली कोटा ताई सड़क मार्ग सफर किन्नो। राज्य सरकार ई चौमासा माए 10 करोड़ पौधा रोपणो तय किन्नो। पौधा देवन और रोपण रो काम मिशन मोड मा थे। अल नीनो री चुनौती रो

0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलनीनो रा असर री शंका न ध्यान रखता थका आज नई दिल्ली में आला दर्जा रा अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वह कहो कि केंद्र सरकार पूरी तैयारी और साफ रणनीति सागे अलनीनो री चुनौतियां रो सामो करण सारू सक्रिय और सावचेत है। कृषि मंत्री कहो कि देश में जेठ महीना में भी कम बिरखा पाछे आषाढ़ में हालात सुधरिया है। देश में अब कम बिरखा वाला जिला की तादाद 262 घटर 178 रह गई है। मीटिंग पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका केंद्रीय कृषि मंत्री कहो के अल नीनो री शंका न ध्यान रखता थका पूरी निगरानी रखी जा रही है। इबीचे चौमासा री बिरखा मोड़ी सरू वेवन रे कारण सोयाबीन और कपास री साख माथे असर पड़ियो है। किसाना ने मक्का बाजरा मूंग और बेगी पाकन वाली और कम पानी री जरूरत वाली साखा री बुआई री राय दीरी जी है। कृषि मंत्री बतायो कि जून महीना में चलाई चिया खेत बचाओ अभियान रा तहत करीब 125,000 कार्यक्रम राखी चिया और 80,00,000 उम्बत्ता किसाना ताई पहुंच बनाई ची। वे बतायो कि बीज री उपलब्धता तय करण सारू करीब 2,25,000 क्विंटल रो राष्ट्रीय बीज भंडार बनाई चियो है।
1: हमने 2-3 तैयारियों और की, एक तो बीज की कोई कमी ना रहे और इसलिए हमने लगभग 2.25 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज का एक रिजर्व भंडार रखा है कि कहीं अगर एक बोनी खराब हो गई, बीच में कहीं गैप ज्यादा हो गया बरसात में, तो बीज की कमी हमारे पास ना रहे, उसकी व्यवस्था भी की है। ऐसे समय किसान को पैसे की भी जरूरत होती है, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड जिन किसानों के पास नहीं थे वो बनाने का भी अभियान चलाया है। 30 जून तक जो 1,14,613 आवेदन प्राप्त हुए थे उनमें से 94,417 स्वीकृत करके उनके किसान क्रेडिट कार्ड बना दिए गए हैं। फसल बीमा योजना में भी किसान ज्यादा सम्मिलित हो उसके लिए भी हम अभियान चला रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरा पाछे आज ऑस्ट्रेलिया सारू रवाना भे गया। प्रधानमंत्री मोदी रो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज सागे मुलाकात रो कार्यक्रम है। इस दौरान दोनों देशों बीच कारोबार निवेश रक्षा बनाई लिखाई और साफ ऊर्जा समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जावेला। विदेश मंत्रालय रा प्रवक्ता रणधीर जायसवाल सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए बतायो कि श्री मोदी रा इंडोनेशिया दौरा हुई दोनों देशों बीच सहयोग रा खास नतीजा सामने आया है। राष्ट्रीय महिला आयोग श्री गंगानगर में 13 साल री टाबरी सागे यौन दुराचार और मानव तस्करी रा मामला में श्री गंगानगर रा जिला मजिस्ट्रेट और SP ने 15 दिन में विगतवार कार्रवाई रपट पेश करन रा हुकम दीना है। आयोग विशेष जांच दल SIT री ओर करीची जांच रोई संज्ञान लीनो है जिन्हें तेत हाल तई 18 आरोपिता ने गिरफ्तार करी चिया है। बाकी आरोपिता री बेगी गिरफ्तारी रा हुकम ही दिया चिया है। इस आगे सगला डिजिटल प्लेटफॉर्म ई मामला में पीड़िताओं जुड़िया वीडियो और सामग्री तुरंत हटावन सारू कही चियो है। देश में हाल तई 23 करोड़ उम्बत्ता लोग नशा मुक्त भारत अभियान जुड़ गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय रे मुजब आम आए 7,81,00,000 उम्बत्ता नौजवान करीब 5.25 करोड़ महिलावां और 17,00,000 उम्बत्ता स्कूल कॉलेज शामिल है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कहो कि ई अभियान रा तहत नारकोटिक्स ब्यूरो राज्य और जिला प्रशासन पुलिस गैर सरकारी संगठन और अस्पताल मिलर देश में नशारी लत न जड़ों खत्म करण सारू लगातार कोशिश कर रहा है। TB मुक्त भारत अभियान रा तहत प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग री ओर जांच और जागरूकता अभियान चलायो जा रियो है। सलूम्बर जिला माए जय समंद हल्का रा देवपुरा माए आज लगाई गया ग्रामीण सेवा शिविर माए लोगों री पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीन स्वास्थ्य जांच करी जी और TB री शंका वाला लोगों ने इलाज री राय दीरी जी। अरब मौसम मौसम विभाग आज जैसलमेर और बाड़मेर रे अलावा आखा राज्य माए बिरखा वेवन सारू चेतायो है। 12 झालावाड़ और कोटा माए तेज बरसात रो ऑरेंज जबकि 33 जिला में येलो अलर्ट जारी करी चियो है। काल सवाई माधोपुर कोटा और 12 जिला में चोखी बिरखा रा आसार है। 10 जुलाई पाछे बिरखा में थोड़ी कमी री संभाव

0: संभावना है। ई बीच आज अलवर कोटा और बारामा में बरसियो। भीलवाड़ा माई दोपहर पाछे बादलों री गाज सागे थोड़ी देर ताई तेज बारिश हुई। धौलपुर माई संवारे हुई छांटो छिड़को भियो। दूजी कानी जैसलमेर माई उमस और जोरदार गर्मी रही। जयपुर माई विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार री ओरों 16 जुलाई ने विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस राखी जावेला। जनता ने सुरक्षित और वैध प्रवासन रा प्रति जागरूक करण और फर्जी एजेंटा और गैर कानूनी प्रवासन और बचाव रा उपायों की जानकारी देवन सारू आ कॉन्फ्रेंस राखी जा रही है। इनो दूजा देशा माए काम कर रहा भारत रा लोगा और मजूरा नो भलो तय करण माए मदद मिलेला। कॉन्फ्रेंस माए राज्य सरकार री प्रवासी राजस्थानिया जुड़ी न्यारी न्यारी पहला कौशल विकास और सैर सपाटा ने बधाओ देवन समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विचार करियो चावेला। आखिर माए खास समाचार एक फिर सुन ले रहो। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे री गुणवत्ता और बनाई चुनाई रा कामा रो जायजो लेवन सारू दिल्ली कोटा ताई सड़क मार्ग सफर कीनो। राज्य सरकार ई चौमासा माए 10 करोड़ पौधा रोपणो तय कीनो। पौधा देवण और रोपण रो काम मिशन मोड माथे। अल निनोरी चुनौती रो सामो करण सारू केंद्र सरकार सावचेत। बीजा री उपलब्धता तय करण बाबत 2.25 लाख क्विंटल रो बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग श्री गंगानगर माए नाबालिग टाबरी सागर यौन दुराचार रा मामला माए संज्ञान लीनो। 15 दिन माए रपट मांगी। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ज पर संध्या के 7 बजे हैं और ये समय है हमारे ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्रामीण जगत का। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे हैं डॉक्टर नमामि शंकराचार्य और अश्वनी व्यास।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनने वाला जी का भी किसान भाई बहन है आप सगला ने आप रोहित आड़ू साथी डॉक्टर नवामी शंकर आचार्य
1: और अश्वनी व्यास रा आज रा घना घना राम राम, राम।
0: अश्वनी भाई देखो आपने मालूम है कि जुलाई रो महीनो लागियो रहे और सागे सागे आषाढ़ भी लागियो है। आषाढ़ लागने मतलब यही है कि तावड़ो तपे
1: बिल्कुल
0: थोड़ी देर में बादली आ जावे और बादली आवे तो अँ लागे जाके धरती माथे तंबू तान दियो हुए और बिरखारा सेनान शुरू हो जावे और 15 दिन बाद में तो चौमासो भी लाग जैसी कहना मतलब वो है कि ताड़ो जचा तपरी है और सिंजारी बेड़ा हुए जीते जीते आंधी के बिरखा छाण छिड़को आने सो और अब जिको स्टूडेंट बैठा अपन लेकिन बारे जिको है अपन ठा पड़ियो क्योंकि मैं है जिको अड़कड़ को बरसना शुरू हो गया पर उसको बेला कहीं है कि आंधी है आप क्या बन के आंधी ला रहे मैं आवा तो वो आंधी ला रहे मैं आए और कवि के भी है कि चर चर का ती छिड़क लिया करे रीत स्नान तंबू से अब ताणियों बादल या आसमान चिड़िया धूड़ में स्नान कर रही है बादल है जिका आबेरे मायने छावण ला गया है और मौसम जिका यहाँ हो गया है जो कि अब बिरखा होवेला पर अब सेनान तो वही लागे कि अब बिरखा नाले बखत मने बिरखा रो दौर शुरू होवेला और थोड़ी देर पहला रीडे में बोलियो था कि राजस्थान में 2 जिला ने छोड़ आखिर राजस्थान में बिरखा रो जोग है जोर भी है।
1: बिल्कुल नवा में भाई थे बार बिरखारी बात की तो मानसून आपने दरवाजे रे बिल्कुल सागे खड़ो है और तैयार है कि वो जमा जमी धरती रीज की प्यास है बने पूरी करे। लेकिन नमा में भाई इरे सागे सागे आपने जो किसान भाई है बिया ने एक चीज रो ध्यान रखना चाहिए अब क्योंकि बुआई रो टाइम आवनालो है
0: खरीफ बुआई है
1: बिल्कुल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: 8 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अब आप गीत सुनियो के सावन जिको मानसून है वो अपने गेट पर खड़े है और तैयार है बरसन वास्तर। लेकिन ई मानसून के मायने आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी जरूरी है कि जगह जगह बिरखारे मायने विलायती बबूल भी पैदा हो जाया करे, और ए विलायती बबूल ही मिट्टी रे वास्तर बहुत घातक हुए। ए जमीन रुचिको भूजल स्तर है पिने भी नीचे गिरा देवे, और वैज्ञानिक शोधा में आ पाई गई है कि जो विलायती बबूल है वो 10 मीटर से भी ज़्यादा गहराई तक जा सके और एक दिन में बहुत बड़ी मात्रा में पानी ना सूख सके। नमामि भाई थाने एक बात बताऊँ मैं कि विलायती बबूल जो है वो मिट्टी ने बंजर भी करे, तो मिट्टी राज्य का पोषक तत्व तो वह खींच लेवे, तो बिरा आसपास दूसरों पौधों पनपी को नहीं सके। और जंगल जिका जठे भी है या जठे भी अपना गोचर है बियाण वास्तव में विलायती बबूल बहुत नुकसानदायक है। इरा कांटा भी बहुत जहरीला होवे और जानलेवा होवे, तो ई वास्तव आपने और ध्यान रखना चाहिए कि आपने आस पास जिक टाइम आप वृक्षारोपण कराई मानसून के मायने, तो पहला अपने विलायती बबूल ने हटा देना है। एक बात और बताऊँ नमामि भाई थाने में कि अब विलायती बबूल अगर आप ऊपर से काट दानी तो खत्म कोनी, क्योंकि जड़ा बहुत गहरी हो गया, तो अपने वैज्ञानिक विधि से पूरी जड़ा सु इन्हें खत्म करना है ताकि वो पाछो नहीं उग पावे। अरे विलायती बबूल जठे भी भेड़ो हो गयो, अब यार सरकार भी पर बहुत जोर दे रही है कि जठे भी विलायती बबूल लागोड़ा है बिना हटायो जावे, तो विलायती बबूल हटार फिर बाद में ही आपने पौधारोपण या बीजारोपण करना है ताकि अपना गोचर ओरण जी का बस सुरक्षित रहे और आप प्रकृति ने पूरी तरीके से सहेज सका।
2: तो साहब आर इतनी बड़ी जानकारी अश्वनी भाई दी, और अब मैं फिर आपने ले चालू गीतर लेखा नहीं।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: प्रस्तावना: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
2: मैं आकाशवाणी हूं, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
3: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
2: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक।

और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: तो बार आपा कितड़लो सुनियो और अब आप आगे बात कर सा कि भारत जी की केंद्र सरकार है वह महिलावां और बालिकावां रे उत्थान रे वास्तर बहुत सारा कार्यक्रम चला रही है। वे कार्यक्रम जिका आधी आबादी ने विकास रे सागे जोड़ सके बीरे वास्तर लागू रहे। तो नमामि भाई इरे मायने इतनी सारी योजनावां है और इतना साल से योजनावां चल रही है कि बालिकावां ने बहुत ज़्यादा लाभ इसको मिल रहा है और महिलाओं ने भी बहुत सुरक्षा मिल रही है।
1: तो असुन भाई देखो, अगर जड़े तक अपरिज की बाई बेटियां हैं या अपरिज के घर में लुगाया हैं बारे उत्थान वास्ते माने आगे बढ़ाने वास्ते सरकारी बहुत सी योजनाएं हैं जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी छोरिया ने एक तो मुफ्त में शिक्षा मिले और सागे साइकिल भी मिले स्कूटी भी मिले, कई योजनाएं मेरे माने आवे। मेरे अलावा सुकन्या समृद्धि योजना यानी बेटी घर में पैदा हुए बदन सुले और 10 साल तक रही हुए तब तक आप बचत खाते रहे मायने चाहे वो आप बैंक हो या फिर डाकघर बैठे आप थोड़ा थोड़ा पैसा मेरे नाम से जमा करा बुकर और बाद जब 18 साल तक हो गए तो बहुत अच्छी राशि बिने मिल सके। मेरे अलावा बालिका समृद्धि योजना है, CBI उड़ान योजना है, माध्यमिक शिक्षा रे खातिर छोरिया ने प्रोत्साहन देने वाली की राष्ट्रीय योजनाएं हैं और सबसे बड़ी है कि घरे माने जद अपारे माँ बहन रोटी बनाता तो चूल्हे रे माने लकड़ी देर और फिर चूल्हो जलावता तो उनके तो धुआं हो तो ई लाई रे माने देखो कितनी लाई पड़े यहाँ पर बैठी जे कोनी, तो सोचो कि बे भी चूल्हे रखने बैठ रोटी बनाते कितो दूर हो तो केंद्र सरकार के प्रति बहुत ही ध्यान दियो और उज्ज्वला योजना ले रही जिसके तहत बयाने सिलेंडर मिलना शुरू हुआ। बिरला मुद्रा योजना है जिसके अंतर्गत 3 तरह मुद्रा योजना 50,000 है फिर 5,00,000 है या उस भी बेसी हुए मेरे अंतर्गत भी यानी राशि ऋण मिले और भी ऋण माध्यम से भी आप व्यापार है वो आगे बढ़ा सके। मेरे अलावा स्टैंड अप इंडिया योजना है, अन्नपूर्णा योजना है, ट्रेड योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है और जनजाति सुरक्षा योजना है, महिला हेल्पलाइन और मेरे अलावा और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके नाम गिना तो कार्यक्रम छोटो पड़ जावे।
0: बिल्कुल
1: कहना मतलब वो है कि इतनी इतनी योजना बस हाँ जरूरी है जानकारी रखनी, जानकारी रखो राख और भी योजना से जुड़ो और सागरी बहन बेटियां हैं बियाने भी जोड़ो ताकि सब रोज को विकास है बढ़िया तरीके से हुए।
0: चलो अब नमामि भाई सुरसापा कार्यक्रम में अगलो लोक गीत
1: सुनो साओ बढ़िया सा गीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी।

0: बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुंचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: राज्य किसान साथी पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाया जा रहा है। नमामि भाई इन मायने कृषि बागवानी और विपणन से जरूरी 120 से ज़्यादा सेवावां एक ही पोर्टल पर उपलब्ध है। तो ई पोर्टल रे माने किसान भाई ने एक तो पेपरलेस प्रक्रिया रे जावे, कागदारी घनी जरूरत पड़े को नहीं, बस जन आधार नंबर रो उपयोग करनो होवे, फोटो बैंक खातो और जमीन रो विवरण जिके में जमाबंदी या नक्शो इसु ही आवेदन हो जावे। सब्सिडी और अनुदान रे माने कृषि यंत्र जिया ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, डिग्गी, खेत तलाई, ई सब रो लाभ मिल जावे। फिर छात्रवृत्ति रो भी किसान भाई लाभ ले सके। तो पोर्टल जी की आधिकारिक वेबसाइट है बठे जार और जन आधार से ओटीपी आवे, व्यक्तिगत जानकारी देनी होवे, ई मित्र माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर जावे।
2: और अश्वनी भाई अबे देखो सिंजार बेड़ा हो गई है और बकत है अपने सीख लेवण रो, पण सु पहला चालता चालता एक भजन सुना पद्मा व्यास रो गायोड़ो।

0: तो साहब ऐसे ही लेना बखत हो गया है और विदा देवो आप रे अपना इताड़ो साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य
1: और अश्वनी व्यासरा आजरा घना घना
0: राम राम, राम।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे थे डॉक्टर नमामि शंकराचार्य और अश्वनी व्यास। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज, और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। संध्या के 7:45 हुए हैं और ये समय है सुगम संगीत का। लीजिए सुगम संगीत में पहला सुगम गीत सुनिएगा नेहा हर्ष की आवाज़ में।

अभिजीत सिंह, अभिजीत की आवाज़ के साथ ही सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं, ये समय है आप लोगों के लिए फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में आज आप पहला गीत सुनिएगा, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में गाया ये गीत, और इनकी आवाज़ है फिल्म चमत्कार में।

श्रेया घोषाल और शैली की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म चमकू से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिएगा श्रेया घोषाल की आवाज़ में। ये गीत होगा फिल्म आशाएं से।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म मैंने प्यार किया से। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:30 हुए हैं और ये समय है आप लोगों के लिए लोक संगीत का। लीजिए लोक संगीत में सीमा मिश्रा के साथ में, सतीश की आवाज़ के साथ में सुनिए ये लोक गीत।

0: रागिनी की आवाज़ के साथ में ही लोक संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा हिंदी में समाचार, तत्पश्चात न्यूज़ एट 9।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य ंगना संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया।

0: कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
2: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
4: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है।

0: भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
2: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semifinals. That is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ज पर रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत सुनिएगा आशा भोसले की आवाज में, उनके साथ में है मोहम्मद रफ़ी और आप ये गीत सुनेंगे फिल्म यादों की बारात फिल्म से।

आशा फिल्म से अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए इस फिल्म संगीत का अंतिम गीत सुनिएगा किशोर कुमार और आर डी बर्मन की आवाज़ में, फिल्म सत्ते पे सत्ता से।

0: किशोर कुमार की आवाज़ के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिए का कार्यक्रम। चर्चा का विषय है
1: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार,
4: धन्यवाद।
2: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
3: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये स्लैकन कर जाती हैं, ये वीक पड़ जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, ये जो पानी था वहाँ जो उसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज़्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहाँ समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज़्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफ़ी सारे बदलाव लेके आता है कि जहाँ कहीं बारिश होती है पहले वहाँ सूखा पड़ने लगता है और जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है ये एक तरह का टेलीकनेक्शन है। टेलीकनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहाँ के प्रेशर को टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेलीकनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मानसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एल नीनो था मानसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एल नीनो था और मानसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एल नीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है इतने ज़्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही हैं तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए। तो ऐसा होता तो ये सुपर एल नीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज़्यादा होंगे। और इस सब को मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मानसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कोई कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा

0: हालांकि केरल में 1 तारीख को जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके हैं वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
1: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ दन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहां होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र है वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर्ड इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा, ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में एनडीएमए की मीटिंग हो रही है और मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है, तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो हैं जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती हैं, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एलनीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
0: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, पर एक सीप हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडेड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एलनीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है, बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन

0: को झेला है। तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है कंटिजेंसी प्लान की, आप महावीर जी बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि कंट्री 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
0: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयार ही है। 2000 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एलिनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार हैं। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ, तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती हैं। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग ये डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध हैं कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वेराइटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है, पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहाँ पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पर लगाने हैं मिलेट्स, एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पर बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस, यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
1: जी।
0: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब मतलब कि भाई एलिनो है इस बार, मानसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय मौसम विभाग NDA में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूँगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरीगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहाँ कभी फसल नहीं खराब होती, आप देख लीजिए वहाँ पे यदि बारिश कम हो जाए ना बल्कि फसल और अच्छी होती है क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहाँ पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी,
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया वर्षा तो सामान्य है सामान्य से ज्यादा है, मगर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई एंड में मिल गई और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली।
0: तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगरकेन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरीगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है, एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरीगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरीगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी, कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो

हम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने डेवलप की है, बट इसमें भी ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहां से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करे कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है। इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो, और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है, और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है, हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी, तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है, और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स हैं वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं या बीमारी

0: आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी। लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए, वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है। क्योंकि देखिए, दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी, वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित। यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूंगा नहीं, अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है। और आपने कहा फोन, फोन उससे भी मिलता है और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इंपॉर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर, जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है, ये मुझे लगता है जिसे कहते ना, जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले। एक और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच ले आपके गांव के सब लोगों के तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता हूं वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूँ, ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए, घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल, मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है, वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम सोइंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइजरी देते हैं, व्हेन टू सो, When to harvest, when to irrigate, how much to irrigate, when to spray chemicals, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलके, वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है। एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ से केमिकल मिलेंगी, कहाँ से

0: सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा। और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरीगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरीगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मानसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो?
2: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर बोरवेल्स जो है, तो अब यह देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हो, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है। और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून का क्या होता है, कि मानसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मानसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहां उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर रात्रि के 10 बजे हैं और ये समय है आप लोगों के लिए फिल्म संगीत का। तो लीजिए पहला गीत सुनिएगा, लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में फिल्म एक दूजे के लिए।

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म मेरे हमसफ़र से, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत था। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अगला गीत सुनिएगा, फिल्म रज़िया सुल्तान से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

यादों की बारात से अभी आपने गीत सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत का ये अंतिम गीत सुनिएगा, द बर्निंग ट्रेन, फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। मणिलाल नाग के सितार पर राग बागेश्वरी, इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं हिदायत खां।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, मणिलाल नाग सितार पर राग बागेश्वरी। तबले पर संगत कर रहे थे हिदायत खां। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ज पर रात्रि के 9:57 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में गीत सुनिएगा, सुर संगम का गाया ये गीत, रंजन और संजन मिश्रा का ये गीत सुनिएगा।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारो चैनल है, रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार।

0: साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात्रि के 11:10 हुए हैं। आज की हमारी दूसरी सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः है 5:51 पर पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।